0: तके।
1: डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो ठीक है. दिस इज इपी द हिपी बैक इन द हाउस. यस गाइस, इट इज द 21st of September. और 21st of September को पता है क्यों इतना स्पेशल है? क्योंकि 21st of September के लिए एक स्पेशल गाना बना है. ऑफ कोर्स, जो गाना मैं अभी आपके लिए बजा रही हूँ, आप उसको एंजॉय करिए एंड देन आई विल सी यू आफ्टर द सॉन्ग.

0: इन केस आप लोगों को याद नहीं है, मैं जरा आपको याद दिला दूं, सोनू निगम इज कमिंग दिस सैटरडे गाइस। अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए अपनी, तो प्लीज गो अहेड एंड बाय दोज रियली रियली सून, बिकॉज ज्यादा टिकट्स नहीं बिकने वाली हैं। आई एम सॉरी, ज्यादा टिकट्स नहीं बचने वाली हैं, बिकॉज इट इज ऑफकोर्स द वन एंड ओनली आइकॉनिक सोनू निगम। ही इज गोना प्ले ऑन September 26th at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. So make sure you go buy the tickets. They're on sale on Ticketmaster. And if you want more info, you can call 855-360-SHOWS. Yes, guys. And his entire tour of US and UK is called A Revolution. Just so you know, okay? I'm going to play you an amazing song by the one and only Sonu Nigam. Enjoy.
1: चोरी चोरी चुप किसे आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे।

0: गाइस इट इज 7:29 ऑन द क्लॉक. हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था, आई हैव सम अमेजिंग स्टफ टू शेयर राइट एट अराउंड 8:30, बिकॉज हम अपने गिव अवे के बाद वी विल हैव दैट कॉन्वर्सेशन. तो अभी मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू हैव एनीथिंग फॉर 60+ पीपल, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, दीज आर जस्ट थिंग्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट एनी टाइम. यू कैन डू इट एट 40, 50, 60, एंड यू नेवर नो, मे बी इट्स एक्चुअली रियली रियली हेल्पफुल. तो Guys, age is just a number. Don't let the age define you. However, if you are in your 30s or in your 20s, then definitely, definitely listen to these because it's going to be so amazing. And I'll see you shortly after this break.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Yaar, boss ne fir se daad diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
12: ये तारा वो तारा हर तारा.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: वी नीड टू टॉक.
15: अब क्या हुआ?
14: Nothing. It's not you.
15: Oh no.
14: It's the distance.
15: Distance? We live 10 minutes apart.
14: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
16: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
17: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Ducttime celebrates its first anniversary in Dallas. For Ducttime services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
20: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
21: वेट, इतना सब और प्राइस?
20: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
22: मैं.
0: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
1: इस वन की काली शक्तियाँ और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
0: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
22: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
0: The One, Force of the Forest,
23: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
0: On 25th September in cinemas near you.

एंड गाइस वी आर बैक भाई. अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं मेरी तरह, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि 1998 से दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द एंटायर कंट्री विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग, रीफाइनेंस. आपको जो भी चाहिए यू कैन लुक एट दैट ऑप्शन. कॉल 9722455626 और विजिट dreamhomemortgage.com. तो गाइज अपने सपनों का घर को सपना मत रहने दीजिए, उसमें थोड़ा सा मेहनत भी करिए, इन्वेस्ट करिए, एंड यू नेवर नो ऑल योर ड्रीम्स कुड कम ट्रू. तो गाइज आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर रहे थे, यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक योर लाइफ बेटर. लाइक आई सेड वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट आफ्टर आवर गिव अवे विच इज गोना बी एट 8 o'clock. ठीक है. और आई होप यू हैड, बाय द वे मंडे है, आई होप यू हैड अ वंडरफुल वीकेंड, एंड आई होप आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है रास्ते में, क्योंकि यू नो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला ट्रैफिक एंड आई गॉट लकी. आई थिंक देर इज़ समथिंग अबाउट मंडे वेयर एवरीबडी लीव्स होम अर्ली, और 6 बजे के बाद तो ट्रैफिक समहाउ नहीं मिलता, लेकिन ट्यूजडे वेंसडे को बहुत ट्रैफिक मिलता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, बट आई ऑलवेज फाइंड आउट ऑन माई रूट एंड आई टेक द सेम रूट एवरी सिंगल डे. So, anyways, guys, let's listen to the song and we'll be back right after these songs.

0: Let me hear you
1: गाइज, अगर आप ट्रैफिक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं एंड यू हैव फेस सम काइंड ऑफ एन इंजरी और एनी अदर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट एंड यू हैव फेस्ड एन इंजरी, देन कॉल उमर ख्वाजा. ही विल फाइट फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही एक्चुअली विंस द केस. आई डिड दैट. अनफॉर्चुनेटली आई एम फिट एंड फाइन, सो ही कुडंट रियली डू एनीथिंग फॉर माय एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड अ फ्यू वीक्स अगो. हाउएवर, इफ यू फेस एन इंजरी, then definitely give him a call, because insurance companies, they'd never want to pay you out, okay? So you need an attorney who's going to fight for you. Call 469-300-5046.

भाई ऐसी होनी चाहिए ना एनर्जी कि दिल में इतना दर्द हो कि वो डिस्को ही कर रहा है. मतलब दर्द इज ऑल्सो नॉट फीलिंग द दर्द, बट द दर्द इज ऑल्सो फीलिंग लाइक इट्स वॉन्टिंग टू डांस, दैट इट वॉन्ट्स टू डू द डिस्को, राइट? दैट्स हाउ दर्द शुड बी, सो दैट इट मेक्स यू मूव. वॉट इज द पॉइंट अदरवाइज? यू सिट विद योर दर्द एंड यू क्राई ऑल डे, नो पॉइंट ऑफ दैट ना. चैनल दैट दर्द इन टू समथिंग पॉजिटिव एंड ग्रो योर सेल्फ. हाँ जी गाइज, ग्रोथ से याद आया, अगर इफ यू वॉन्टिंग टू ग्रो योर फाइनेंसेस एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू हैंडल ऑल योर पेरोल, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, स्पेशली इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर या फिर एनी बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, देन रीच आउट टू ए जी फिनटैक्स. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. हम लोग थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं एंड उसके बाद आप आइए 8 o'clock को, हम लोग अपना गिव अवे खेलेंगे. टुडेज गिव अवे इज फ्रॉम द फन पिज्जा किचन, ऑफ कोर्स द वन दैट एवरीबडी लव्स. सो कम बैक एंड देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
13: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: बैक। तो आज विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले दैट गिव अवे गेम जो हम हमेशा खेलते हैं 8 बजे। इट इज 8:05 एंड दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय शो एन इवनिंग इन डैलस। लेकिन आज का गिव अवे है क्या, इट्स फ्रॉम द फन पिज्जा किचन और आप जीत सकते हैं अ $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग दिस वन सिंपल क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले even if you don't win the game you should definitely go to Fun Pizza Chicken and check out their new Mexican inspired pizzas jaise ki fiesta veggie fiery pollo loco seafood pack senior camarón and so much more. They all sound so delicious and I would definitely go check it out. Theek hai, to remember this is the Fun Pizza Kitchen in Frisco and here we go. To aaj ka hamara giveaway game is again I will tell you एक स्टोरी और आपको गेस करनी है कि ये मूवी कौन सी है। ठीक है, तो चलो खेलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक लड़का नहीं था, एक लड़की थी। दिस क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर जो है एक लड़की है। एक लड़की थी, वो ना बहुत बक बक बक बक बक बक करती थी एंड शी वॉज एब्सोल्युटली सो ऑब्सेस्ड विथ हर सेल्फ। ठीक है, लेकिन उसके साथ तो नहीं, उसी के एडवेंचर में, इट्स लाइक एन काइंड ऑफ लाइक एन एडवेंचरस स्टोरी, एक दूसरा लड़का भी आ जाता है और वो दोनों ट्रेन पे मिलते हैं। ठीक है, और ये जो लड़का है उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है और वो बहुत रो रहा होता है एंड ही इज़ लाइक अरे मेरी लाइफ खत्म हो गई यार, यार, यार, यार, यार, यार, ऐसे करके ही वॉज सुपर सुपर सुपर सुपर डुपर डिप्रेस्ड एंड दिस बंदी शी जस्ट केप्ट गोइंग यैपिंग यैपिंग यैपिंग यैपिंग एंड शी इज़ लाइक हैव सम एनर्जी हैव सम ओके एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर लेट्स सी हु हैज कॉल्ड अस एंड हु इज अटेम्प्टिंग टू आंसर द गिव अवे क्वेश्चन। कट गया कॉल, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल आ जाएगा अगर आप। हियर वी गो, हाय कैन यू हियर मी?
1: हेलो, द आंसर इज जब वी मेट।
0: यस द आंसर इज जब वी मेट। लेकिन आप अपना नाम तो बताइए पहले।
1: अपेक्षा।
0: अपेक्षा कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। अपेक्षा लाइन पे बने रहिए, आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ओके इन द बैकग्राउंड। ओके गाइज, आप ये गाना एंजॉय करिए ऑफ कोर्स फ्रॉम द वन एंड ओनली मूवी जब वी मेट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम मूवीज। तो एंजॉय दिस वन, वी विल बी राइट बैक।

तो गाइस, जैसे तालियों के साथ लेट्स सेलिब्रेट अपेक्षा, cuz शी वन द गिव अवे. वाह, गाने में भी तालियां बज गई. लेकिन गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 8:30 ऑनवर्ड्स, एक्चुअली हमारे गिव अवे के बाद, आई एम गोइंग टू शेयर विद सम ऑफ यू समथिंग दैट आई रोट आउट टुडे. मैंने कहा नहीं यार, यू नो दिस इज द टाइम, cuz येस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड्स, यू नो वी आर ऑल इन आर 30s एंड एवरीथिंग, एंड वी आर ऑल सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार, मतलब लाइफ ऐसे लग रहा है कि इट्स लाइक स्लिपिंग बाय, एंड यू नो टाइम नहीं हो रहा है. वी हैड सो मेनी गोल्स, वी हैवन बिन एबल टू अचीव इट. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं एंड यू आर पॉन्डरिंग ओवर कि लाइक वट्स वट्स गोना हैपन, देन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समवेयर राइट नाउ. बेसिकली थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कहीं तो दूर DFW में, कहीं दूर एक 34-year-old, 35-year-old पर्सन, गर्ल, गाय, वट एवर, सोच रहा है कि यार एक जिम मेंबरशिप है, मतलब मैं दे तो रहा हूँ $100 उस जिम मेंबरशिप में, लेकिन मे बी आई कैंसिल इट नेक्स्ट मंथ, क्योंकि भाई जिम जाना तो होता है नहीं. एंड दे आर टेलिंग दम सेल्व, आई विल गेट सीरियस अबाउट माई लाइफ वेन लाइफ मेरी थोड़ी सी काम हो जाएगी. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वीज़ा का प्रॉब्लम खत्म हो गया, नई जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, देन आई गो टू द जिम. सो वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड समवेयर एल्स एक 46-year-old, अ पर्सन इन देयर 40s, इज स्टैंडिंग इन देयर किचन रात के 11 बजे एंड लुकिंग फॉर स्नैक्स इन देयर फ्रिज, थिंकिंग कि भाई मैं यहाँ कैसे पहुँचा. ठीक है, द जॉब डजेंट एक्साइट दैम, उनकी जो जॉब है वो ऐसी है, ठीक है, वही टेक वाली जॉब है, नथिंग फैंसी, वट एवर, दे बिन डूइंग दैट फॉर अ वाइल, इट पेज द बिल्स, श्योर दे डूइंग इट, यू नो दे कांट गो बैक बिकॉज दे प्रॉब्ली हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट लोन्स टू पे ऑफ, और मे बी लाइक अ हैवी मॉर्गेज विद देयर वाइफ एंड यू नो किड्स है, बच्चों की एक्टिविटीज हैं, एंड देयर बॉडी सम हाउ द बॉडी इज नॉट एज एनर्जेटिक एज इट वॉज इन द 30s और इवन इन द 20s फॉर दैट मैटर. फ्रेंडशिप्स जो है, फ्रेंड्स अपने अपने बिजी हो गए हैं, सब अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गए हैं, यू नो फ्रेंड्स के पास आपके लिए टाइम नहीं है, एंड यू आर स्टैंडिंग एंड वंडरिंग कि इज दिस इट, इज दिस व्हाट द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इज गोना लुक लाइक, लाइक व्हाट्स गोना हैपन. तो हियर इज द थिंग, दोनों लोग जो है, दोज टू पीपल माइट बी द सेम पर्सन, लेकिन 12 साल अपार्ट. ठीक है, 35 साल का बंदा सोच रहा है मैं जिम कैंसिल कर दूं अपना जिम मेंबरशिप, क्योंकि जाता तो हूं नहीं मैं, और 46 वाला ये सोच रहा है कि भाई अब मैं रात के 12 बजे स्नैक्स ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, जॉब चल रही है जैसे चल रही है, यू नो ही इज़ अ लिटल स्लगिश, प्रॉबेबली पुट ऑन अ फ्यू पाउंड, थोड़ा पॉट बेली भी आ गया है. ओके, इट माइट बी द सेम पर्सन. भाई टुडे इन द नेक्स्ट 90 मिनट्स ऑल द वे अंटिल 10 o'clock वी आर गोना टॉक अबाउट एग्जैक्टली दिस. इफ यू आर इन योर 30s राइट नाउ, दिस शो इज फॉर यू. If you're in your 20s, then definitely listen, because you never know that you might just need these suggestions when in about 10 years, and or you can start incorporating them right now and maybe you can get a head start. Aur agar aap 40s mein hai ya uske beyond hai, jaise ki 60s jo mujhe pehle call aayi, well tab to aap channel bilkul bhi mat ghumana, you should definitely stay, thoda aur ghoom lo, matlab 1 ghante aur drive kar lo apne aas pados mein. So that you can listen to this, you will hear yourself in this. I promise you, there's good news for you too. Okay? तो वो जाएंगे, हम उसके बारे में बात और करेंगे, लेकिन after the short break and the song.

तो गाइज वापस आ गए हैं हम लोग. जैसे मैंने बोला था कि हम लोग बात कर रहे हैं सम गुड हैबिट्स टू बिल्ड एज अर्ली एज यू कैन, स्पेशली इफ यू आर इन योर थर्टीज, बिकॉज मतलब फोर्टीज मिडल एज, कोट एंड कोट मिडल एज, इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे. सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अर्ली देन यू नो वॉट, यू विल बी एट अ रियली गुड प्लेस. इसीलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे हैव अ रियली कूल प्लान, इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. अगर आप इस तरह किसी जॉब में हैं जहां से आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस एंड आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी एंड यू आर लाइक कि अच्छा यार मतलब कैसे होगा व्हाटएवर, सो देन दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू. इट्स जस्ट फॉर $85 अ मंथ. चाहे आप प्राइमरी केयर है, प्रिवेंटिव केयर है, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मो, कॉल 214-666-6259, 214-666-6259, और विजिट passionhealthphysicians.com. ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है गाइज, इट्स अ प्लान. ओके, एंड एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली अप्लाई. तो गाइज ब्रेक में जाने से, ब्रेक में तो नहीं, मतलब यू नो बिफोर गोइंग इनटू द सॉन्ग वी वर टॉकिंग अबाउट सम हैबिट्स दैट यू कैन बिल्ड. तो आज का आइडिया पता क्या है, आज का आइडिया सिंपल है. योर थर्टीज जो है ना, इट्स नॉट लाइक अ वार्म अप. ओके, इट्स दे आर नॉट इवन अ होल्डिंग पैटर्न. वॉट इज इट, इट इज अ डेकेड जहां पे आपने अपने ट्वेंटीज में जो जो किया, आपने अपनी जो जो हैबिट्स बिल्ड करी. ट्वेंटीज इज वेयर यू फर्स्ट टाइम बिकम ए प्रॉपर अडल्ट. ठीक है, 18 साल में भी यू आर स्टिल काइंड ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, स्पेशली इफ यू आर अ साउथ एशियन और यू कम फ्रॉम द इंडियन कल्चर और साउथ एशियन कल्चर. 18-19 साल तक पेरेंट्स आर स्टिल वेरी सपोर्टिव एंड दे ट्रीट यू लाइक अ चाइल्ड. आई हैव बीन देयर, यू हैव बीन देयर, वी ऑल नो दैट. ट्वेंटीज इज बेसिकली काइंड ऑफ द ओनली प्लेस वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट गोइंग आउट एंड यू नो फिगरिंग आउट योर स्टफ. तो व्हाटएवर यू डिड इन योर ट्वेंटीज ईदर हार्डन्स एंड बिकम्स अ फाउंडेशन इन योर थर्टीज, या फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. वेदर इट्स दैट ड्रिंकिंग हैबिट एवरी सैटरडे नाइट, और वेदर इट्स लाइक वेकिंग अप लेट एंड नॉट गोइंग टू द जिम, और लाइक ऑलवेज रशिंग फॉर वर्क, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, द हैबिट्स यू कीप एंड द पीपल दैट यू इन्वेस्ट इन, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या दोस्त हो. ओके, द स्किल्स यू बिल्ड, द पर्सन दैट यू आर डिसाइडिंग टू बिकम. By the time you hit your mid-40s, all of it has compounded into what you can call your life. So guys, it is very, very important to build properly now, as early as you can, so you can enjoy the benefits of investment later. And I don't mean financial investment, I mean life investment. So we will continue this after this commercial break. We are about to go into a commercial in like 30 seconds. So come back and we will talk some more.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor aawaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Hello guys, this is me, Kinjal Ave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

आर बैक. हाँ जी, रुक जाओ दिल दीवाने, मेरी बातें भी सुन लो. तो जैसे मैंने बोला था कि वी आर टॉकिंग अबाउट वट टू डू इफ यू स्पेशली इन योर 30s टू हैव एन अमेजिंग मिड लाइफ एंड मे बी इवन अवॉइडिंग दैट मिड लाइफ क्राइसिस इफ यू आर फीलिंग दैट. ठीक है, नाउ एक पिक्चर से शुरू करते हैं, लाइक विजुअलाइज दिस. ओके, थिंक अबाउट अ डोर. एक बहुत ही भारी सा दरवाजा है, इट्स बिग एंड इट्स हैवी एंड इट्स लाइक स्विंगिंग थ्रू द होल रूम. मतलब पुराने जमाने के भूतिया बंगला वाला जैसा दरवाजा है ना, थिंक ऑफ इट लाइक दैट ओनली. मतलब भूत बनाने की जरूरत नहीं, बट बेसिकली पुराना दरवाजा है. ठीक है, एंड इट्स हैवी, मतलब गुड अच्छी टीक वुड का बना हुआ है. एंड देन उसके जो कोने में ना एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा लगा हुआ है, विच इज कॉल्ड द हिंज. यस, दैट्स द हिंज आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द डेटिंग ऐप यू गाइज. द हिंज एट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द डोर विच अटैचेज इट टू द फ्रेम. ठीक है, नाउ इस हिंज को अगर हम थोड़ा सा भी हिला देना तो ये जो दरवाजा है इसका खुलने का और बंद करने का तरीका चेंज रहेगा. राइट, दिस हिंज इज बेसिकली योर 30s. योर 30s इज लाइक दैट वन टाइनी पीस ऑफ मेटल दैट्स गोइंग टू डिटर्मिन हाउ फार दैट डोर इज स्विंगिंग बेसिकली. ओके, द डिसीजन दैट यू मेक इन दिस डेकेड दे लुक स्मॉल, दे लुक रियली रियली रियली रियली टाइनी वेन यू मेक देम. जैसे कि साइनिंग अप फॉर दैट रिटायरमेंट प्लान, गोइंग टू द जिम कंसिस्टेंटली, टेकिंग दैट वॉक, यू नो, मॉर्निंग इवनिंग वट एवर और डोंट. ओके, वेदर यू वॉन्ट टू कॉल योर BFF बैक. ओके, और जस्ट यू नो बी लाइक हे व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट यू नो मेक दैट वन फोन कॉल टू योर बेस्ट फ्रेंड जिनको आपने टाले जा रहे हो, मिल नहीं रहे हो अपने दोस्तों से. एंड देन और एनी अदर लाइक से टेकिंग अप

हार्डर प्रोजेक्ट, ओके, और एनीथिंग लाइक दैट, ओके, या फिर या तो आप इसकी चीज़ें अभी कर लो या फिर यू लेट इट स्लाइड फॉर अनदर मंथ. ओके, लुक ऑनेस्टली एट अ रिलेशनशिप जो काम नहीं कर रहा है. आप उस रिलेशनशिप में इसीलिए पड़े हो पिछले 10 साल से, बिकॉज आप उस 10 साल से वो रिलेशनशिप चल रही है, ठीक है? दैट्स इट. नन ऑफ दीज फील्स लाइक अ लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द डे, ठीक है? दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ. बट जस्ट लाइक दी हिंज, एक स्मॉल एंगल एट द स्टार्ट बिकम्स अ ह्यूज डिस्टेंस एट द एंड. तो एक छोटा सा जो यू नो एंगल था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है, ठीक है? अ शिप दैट्स ऑफ द कोर्स बाय 1 डिग्री. एक पायलट भी अगर अपने कोर्स से 1 डिग्री हट गया, देन द हार्बर और द फाइनल डेस्टिनेशन इज माइल्स अवे फ्रॉम द टारगेट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग जर्नी. एक गलत टर्न आपने ले लिया ना राह पे, कहीं और पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. मे बी यू रीच अ डेड एंड. योर 30s आर दैट हार्बर, योर 40s एंड 50s आर दैट ओपन वाटर. थिंक अबाउट इट लाइक दैट, ओके? दिस इज वाई 30s जो है मैं उसको हिंज के साथ कंपेयर कर रही हूँ, एंड नॉट द 20s एंड नॉट इवन द 40s. 30s इज लाइक योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. यू हैव फाइनली अराइव्ड एट योर सो कॉल्ड अडल्टहुड. दिस इज द टाइम यू आर काइंड ऑफ पुटिंग द स्टोन्स टुगेदर, ठीक है? क्यों, इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग. दिस सॉन्ग गोज आउट टू मिस्टर अनोनिमस, हु हैज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग फॉर मिसेज अनोनिमस.

तो गाइज जैसे मैंने बोला था, योर 30s आर बेसिकली द हिंज. तो 30s की बात अगर हम करें और हिंज की बात अगर हम करें, तो अगर आप, इफ यू आर फीलिंग दैट मिड लाइफ क्राइसिस एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक इन योर करियर, ठीक है, दिस इज फॉर माई डैलस प्रोफेशनल्स इन दैट 30s 40s, एक्चुअली वेर एवर यू आर. ओके, इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर करियर एंड यू फील लाइक AI and workplace and layoffs is leaving everything, you know, like just on the table, and you don't know what to do about your career anymore, then you need to join the 4-time TEDx speakers and award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulshrestha for a powerful career growth workshop. Maybe you need to learn how to ask for a raise. Maybe you need to stand up for yourself. Maybe you need to learn how to say no. These are the things that you can actually learn from person who have dealt with this. Learn how to reposition your values, strengthen your leadership presence, and accelerate your career with clarity and confidence. ये जनवरी नहीं, सितंबर 19 को हो रहा है डैलस में. दिस इज अ वर्कशॉप, इट्स कॉल्ड प्ले इट फुल .com/Dallas. यू कैन लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट लिंक, रजिस्टर एट प्ले इट फुल .com/Dallas, एंड यू कैन बिल्ड योर करियर रियली इन अ पावरफुल वे. ओके, we're going to play this little song and then come back after this break.

तो गाइज जैसे हम एक्सप्लोर करे थे योर 30s एंड योर 20s एंड एवरीथिंग, तो जैसे मैंने बोला योर 30s इज लाइक दैट हिंज, वो दरवाजे का वो छोटा सा मेटल का टुकड़ा जो हिंज होता है. एंड वाई द 20s इज नॉट दैट एंड वाई द 30s और योर 40s इज नॉट दैट फॉर दैट मैटर. 20s जो है आर फॉर एक्सप्लोरेशन, वेदर यू ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स. आई नो सो मेनी पीपल गो इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग द 20s, वेदर यू आर चेंजिंग जॉब्स, वेदर यू आर चेंजिंग सिटीज. You know, you're supposed to try things. Try the wrong things in your 20s. Wrong jobs, wrong cities, wrong careers, wrong friends, wrong people, wrong habits. Try everything that's wrong for you, because then by the end of it, you will know what not to do. That's why I am saying ki 20s mein bhai matlab jitna marzi ho sake utni marzi utni jise try karo. 20s is for trying, okay? There is a wonderful psychologist and author called Meg J. उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इसके बारे में, about your 20s that are called the so-called defining decade. And she's right that these matters. Your 20s are where you gather the raw material. उसके बाद your 40s basically, if you're in your 40s, your midlife, क्योंकि life expectancy is around 80-85 now. So ideally 40-45 is considered to be, you know, योर मिड लाइफ. क्योंकि अगर पहले लोग सोचते 50s इज द मिड लाइफ, बट गाइज 100 साल तक बहुत कम लोग जी रहे हैं आजकल के ज़माने में. पहले भी बहुत ही कम लोग जीते थे. अगर आपकी 100 साल तक उम्र है तो देन यू आर लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. लेकिन बहुत लोग डू नॉट सर्वाइव ऑल द वे टू 100, मे बी एट द मोस्ट 80-85, राइट? सो दैट इज़ वाई मिड लाइफ देन बिकम्स योर 40s. आई डोंट नो इफ दिस इज़ लाइक शोइंग यू अ मिरर टू माई फ्रेंड्स हु आर इन देयर 40s, बट गाइज might as well face reality, right? There's no point of being in denial. 40s are for what? Living in what you build. ठीक है, तो आपने जो build किया है 40s में, आप उसको enjoy करो. You live in that moment. Whether you're in that house, you're in that career, you're in that marriage that you invested in, or maybe the single life, you know? I mean, you have obligations. कम दरवाजे खुलते हैं, ऑप्शंस वैसे कम हो जाते हैं. 20s में आपके पास बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, डेटिंग इज वेरी इजी. 40s में व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव. यू कांट बी पिकी, राइट? फ्यूअर डोर्स आर ओपन, ईच वन कॉस्ट मोर टू वॉक थ्रू. एंड देन 30s की जब हम बात करते हैं, दिस इज द ओनली डेकेड वेयर यू कैन हैव बोथ थिंग्स एट वंस. यू कैन स्टिल ट्राई, ओके? यू कैन स्टिल ट्राई ऑल ऑफ द थिंग्स एंड देन you have enough experience at by this point, you know, because you've gone through that whole decade of adulthood, that you know what you want and what you don't want, who you want to hang out with and who you don't want to hang out with, and enough runway to actually change that direction. Agar aapko pasand nahi hai, theek hai yaar, abhi bhi time hai. I'm just in my 30s, I'll change my direction. You can change careers, you can change cities. I mean, I can tell you for a fact that I did not move in Dallas until I reached 30. When I reached 30, I was like, bhai, अभी नहीं करूँगी तो बाद में कभी नहीं कर पाऊँगी. सो आई एक्चुअली मूव्ड टू अमेरिका राइट आफ्टर आई टर्न 30. एंड दैट कॉम्बिनेशन माई फ्रेंड्स, इट्स रेयर, इट डजेंट लास्ट फॉर एवर. तो इस जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो लिसनर्स हैं हु आर इन देयर 30s कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, या जो भी है आप ड्राइव करके वापस आ रहे हैं, मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू कैन ड्यूरिंग दिस डेकेड.

गाइज आई टेक रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई गाना पसंद है प्लीज बेझिझक मुझे कॉल करिए और मुझे रिक्वेस्ट करिए, और अगर वो गाना अच्छा है मज़ेदार है जैसे ये अगला वाला गाना है, आई विल एब्सोल्युटली प्ले. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाई यू रिक्वेस्टिंग द सॉन्ग, जस्ट से दैट कैन यू प्लीज प्ले वन गरम चाय की प्याली, बिकॉज आज चाय स्पेशली इंटरनेशनल चाय डे है अपेरेंटली. भाई मुझे तो कोई चाय नहीं पिला रहा, लेकिन ये गाना ही सुन लेते हैं हम लोग.

We are back. अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एनर्जी सॉल्यूशंस, स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, देन यू शुड रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज ये जो आपकी जो 20s वाली एनर्जी है वो 30s में नहीं रहती है. टोटली अनरिलेटेड. हाउएवर, तारा कमर्शियल एनर्जी इज प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002. दे हैव कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 8444-2828-08 और विजिट तारा एनर्जी डॉट कॉम टूडे. तो गाइज, जैसे हम बात कर रहे थे, 20s इज फॉर एक्सप्लोरिंग एंड एन्जॉइंग लाइफ एंड योर 30s इज बेसिकली योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. आप अपने लेगोज बना रहे हो बेसिकली उस टाइम पे, ठीक है. तो मनी कंपाउंड्स, हेल्थ कंपाउंड्स. सो हम इसके बारे में एडवर्टाइजिंग हमेशा करते रहते हैं. आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस एंड आई हैव सीन पीपल हु आर इन देयर 50s, नॉट 50s, खैर पीपल हु रीच देयर रिटायरमेंट एज and don't have enough money to retire. They have to continue working all the way until 70, 72. Aap buddhe ho gaye ho, you can't retire. Imagine there are people, you've worked your entire life, you've saved, you've done all the things, right? Paid your taxes, but by 65, you still don't have enough money to retire. Aur aapne jo bhi apne 401k mein dala hai, remember, it's a pre-tax contribution. To usme se bhi bahut sara tax government ko fir se dena padega to actually use it. And you know, those kind of situations. So, इसीलिए अभी से अगर आप plan करते हैं 30, it's a long game. Let me give you an illustration. This is simplified, ठीक है? Money compounds. पहले money की बात करते हैं. And this isn't just the financial advice, but it actually makes point. Say, you invest in $500 a month and earn an average of, say, 7% a year. ठीक है? 7% a year कहीं भी नहीं मिल रहा. High yield savings account में मिल रहा. आपको सिलेक्टिव बैंक्स में मे बी लाइक 3.7% ऑन एन एवरेज. ओके, सो स्टार्ट एट 30, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को, जैसे 401k, IRA, रॉथ IRA, देन मे बी यू कैन गेट अप टू लाइक 7-10%, ठीक है, ईयरली. नाउ यू स्टार्ट एट 30, कीप गोइंग ऑल द वे अंटिल 60, यू विल एंड अप विथ रफली $600,000, मे बी मोर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. ऑफकोर्स, इफ यू स्टार्ट एट वॉट 40, you can contribute the same amount, same kind of rate of interest, but you end up with roughly $260,000. Now you can double check the math on this, but I can tell you for a fact that by delaying one decade in your investment for your retirement, you are reducing a few $100,000 in your final payout. One decade of delay costs you more than half the money that you actually invest in. And that's not because being 40 is lazy. It's because time was doing the heavy lifting for you. And then 10 fewer years later, aapko interest kam mil raha hai. So remember, agar aap zyada jaldi shuru karoge, aapko 10 saal ka compounding interest zyada milega. Aur kya hota hai 30s mein, aap kya kar sakte ho? To have a comfortable life when you're retiring or when you're getting older, or maybe just living a better life in your 40s. We will talk more about this after the song. This is a request. This is Rubaroo.

0: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
2: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
2: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
0: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
5: वी नीड टू टॉक।
6: अब क्या हुआ?
5: नथिंग, इट्स नॉट यू।
6: ओह नो,
5: इट्स द डिस्टेंस।
6: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
5: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर, पनेशिया।

लेकिन गाना सुनने से पहले अगर आप अपने इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, वेदर दैट्स अ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन और अ शादी और एनी अदर ओकेजन, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग, एनीथिंग, विनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेदर यू आर लुकिंग फॉर डेको, केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज एक्सक्लूसिवली केटर्ड बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. विनेसा विंस इज देयर इवेंट मैनेजमेंट पार्टनर विथ बसेरा.

गाइस, आज की डिस्कशन खत्म करने के लिए मैंने जो चार चीजें बोली थी, मनी कंपाउंड्स, हेल्थ कंपाउंड्स, करियर कंपाउंड्स, रिलेशनशिप्स आल्सो कंपाउंड, आपका जो एसोसिएशन है ये सारा ऐड अप हो जाता है. तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं टू हैव अ रियली स्मूथ लाइफ इन योर ओल्डर एज और समथिंग, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट व्हेन यू आर यंग. डोंट वेट टिल यू गेट टू योर मिड लाइफ क्राइसिस एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. You know, if you start now, then you won't even feel that so-called midlife crisis. By the way, guys, एक चीज तो मैं बोलना भूली है इन सब में. आप अपनी जो identity आज की date में बनाओगे, you know, and 20s में, of course, we are still kind of discovering ourselves. In your 30s, the identity that you make for yourself, that identity also compounds. Whether you're going to be that workaholic person who just keeps their mouth shut and tolerates all kinds of garbage that you get from your boss, are you going to be that person? Or are you going to be that person who stands up for themselves and be like, no, these are substandard work ethics and I'm not going to do that. If you want me to work an extra 45 minutes on Friday for some meeting after 6 p.m., then you have to pay me extra or you have to do something extra for me. If your job, remember, is a transaction, okay? Always remember that, okay? You are becoming who you are going to be. तो अगर आप 30s में, अगर आप थोड़ी वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन 30s में आप डील करोगे, और ये वाली चीज़ें ना पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर पार्टनर इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, कई बार लोगों को पता नहीं चलता, यू नो, योर पार्टनर स्टार्ट्स मेकिंग फन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. जब इन योर 20s, जब अर्ली एज में लगता है, कहता है ओ दे आर जस्ट जोकिंग और व्हाटएवर, इट्स जस्ट फन. लेकिन वो बार बार रिपीटेड रिपीटेड हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स बिकम इंसल्टिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इस पर बहुत मूवीज भी बन चुकी है, वी हैव ऑल सीन इट इन फ्रंट ऑफ आर आईज, वेदर इट्स योर ओन हाउस, इट्स योर ओन रिलेशनशिप और योर पेरेंट्स रिलेशनशिप. आई मीन, आई नो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, दैट इज द आइडेंटिटी your person or your partner can actually start accepting by in the next 10 years or something like that. Lekin agar aap 10 saal baad usko shuru karoge to wo aur mushkil hoga, wo change nahi ho pata hai uske baad, okay? Because 30s is still where people are still accustomed to change and they are still improving themselves. Once you hit the 40s, then you are set in stone. Uske baad nahi hota hai, by the way. Now this brings me to the fact ki midlife crisis kya hai. इसके बारे में हम कल बात करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ एंड आई होप यू हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट. आई विल सी यू टुमारो एट 7 p.m. गुड नाइट एंड

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
1: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
3: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
3: सर। वो
2: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: मैं साबित कर

0: दे दीजिए, बताइए कहाँ ले जाए।
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साधा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साधा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: No, no, okay.
1: Fun 4.9 FM Funasia. Funasia. Fun Fun Fun Done.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम हैं ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर, सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the
3: volume. Beta, 95% आए?
4: हाँ मम्मी.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
3: हाँ. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, but business का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sathiya!
7: Kuch awaazein sirf entertain karti hain aur ek awaaz aapki zindagi ka soundtrack ban jati hai.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फिनिशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: परेशानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर महकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hey everybody, this is Asin and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: 2.9 FM Funasia. Funasia. Fun Fana Fun Done.
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह।
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
3: अरे

spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonesia, 104.9 FM.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MVA बनता है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

जुम्मना माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की आदत नहीं है तुम्हें

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: Banjo.
2: Lutte

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: Let's get you some messages from some of our advertisers and sponsors, and that, ladies and gentlemen, is coming up right now. Listen carefully, and we'd love for you to use their products as well as their services. Here they are.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
9: Wait, इतना सब और प्राइस?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional हो या fusion, अब हर outfit बोलेगा।
10: मैं ही तो
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। बेटा 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
13: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना।
17: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ाबे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ाबे, स्वीट 205। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
6: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
7: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं
8: डील कहाँ
7: सिंपल पासिया पे इंट्रोड्यूसिंग पासिया डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ ओपन पासिया सी व्हाट्स अराउंड यू फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन
9: डाउनलोड पासिया दैट्स PAASYA टुडे बिकॉज डील्स दूर नहीं पास है
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
10: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan.
11: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
17: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
18: इस वन की काली शक्ति और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
19: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
3: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
19: The One, Force of the Forest.
8: A Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
19: On 25th September, in cinemas near you.

0: That's exactly what we are going to do on Gup Shup Gali, only on 104.9 FM, Fun Asia Radio. Good morning, DFW. This is Rumita. And as I said, welcome to Gup Shup Gali. I'm finally back on air after being under the weather. And honestly, it feels so good aap logo ke beech aane ke baad. I mean, ye jo humari Gup Shup hai, ye rukni nahi chahiye. Or this changing weather, you know, can really catch us off guard. So please, aap log, stay warm, stay hydrated and take really good care of yourself. Aaj hai 22nd of September and officially it's the first day of fall. Yani ki ek naya season. So, chaliye isi thought ke saath shuru karte hain aaj ki Gup Shup. Tuesday hai, matlab aaj baat hogi rishte, family aur hum aur aap, hum jaise logo ki. So let's begin one of the most dangerous sentences of any relationship. Main naraaz hoon. Really, because tone keh raha hai ho, face keh raha hai naraaz ho. Kab thoda aggressively aap counter pe rakh rahe ho. और कब भी कह रहा है यार भाई आप नाराज हो बट टेक्निकली वर्ड्स आपके हैं नहीं आई एम फाइन लाइक रॉस यूज्ड टू से लाइक आई एम फाइन यू नो रिलेशनशिप में एक फनी हैबिट होती है ये कि वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड समथिंग वी हैवंट एक्चुअली सेड लाइक उसको खुद समझना चाहिए बट शुड दे तो वही सवाल है वेन यू आर अपसेट डू यू से इट और एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू फिगर इट आउट और पार्टनर अगर पूछे क्या हुआ हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली रिप्लाई कुछ नहीं लेट्स स्टार्ट ट्यूजडे विथ अ लिटिल ऑनेस्टी ओनली ऑन Gup Shup Gali विथ मी रुमिता
1: तुझे तक तक तक

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, from timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis. Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
6: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
5: Aakhir kya hai is biryani mein?
6: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
1: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
8: Every home has a story. Let's create yours together.
9: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
7: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 पीएम ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

That was Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia dancing on this already Dandiya wali tune. You know, oi, Navratri Dandiya, and the feeling already is there in this song, in this movie, which is releasing on 25th of September. Aur movie ka naam bahut interesting hai, The One. Agar aapko iske details pata hai ki is movie ka naam aisa kyun hai, to mujhe call karke zarur bataiye, because I have no clue. But the music is really a beat. You're listening to Gup Shup Gali with me, Rumita, only on 104.9 FM, Funisha Radio, jahan pe hum na tari tari, matlab, Tuesday ko different types of झगड़ों के बारे में बात करते हैं. वही झगड़े जिसका कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है. आई नो सुबह सुबह झगड़ों के बारे में सुनने का मन भी कैसा करता है, बट हम वी कैन डिकोड देम राइट, बिकॉज हर झगड़ा इतना फ्रूटफुल नहीं होता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाले. बट झगड़ा तो हमें करना ही है, बिकॉज कलेश के बिना जिंदगी कैसे पॉसिबल है. यू नो व्हाट कॉजेस सम ऑफ द सिलीएस्ट आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत बड़े वाले टॉपिक्स होते नहीं है, द टाइनी रिपीटेड थिंग्स. जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉमन सिचुएशन ज़रूर है कि वो जो भीगा तौलिया है वो बेड पे है, या क्लोजेट का डोर खुला हुआ है, जूते सही जगह पे नहीं है जहाँ पे होने चाहिए, और बिल्कुल वैसी उस जगह पे जहाँ पे आप उस पर ट्रिप करके गिर सकते हो. खाली एम्प्टी यू नो मिल्क कार्टन फ्रिज में अभी भी है, टूथपेस्ट का कैप खुला हुआ है, एंड इंडिविजुअली नन ऑफ दीज ट्रिवियल थिंग्स डिजर्व एन आर्ग्यूमेंट. बट After the 48th time, suddenly you're not fighting about a towel anymore. You're delivering a TED talk on respect and responsibility. You know, आप शुरू ऐसे करते हो कि issue towel का नहीं है, और भाई partner आपका सामने खड़ा है और सोच रहा है कि यार मुझे लगा issue towel का ही था. So tell me, आपके partner की वो कौन सी harmless habit है जो उनको बिल्कुल normal लगती है, but it actually drives you crazy. You know, I'm going to keep it very light, क्योंकि आज किसी का घर नहीं तुड़वाना है मुझे. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. Agar aap abhi bhi drive kar rahe ho, you're reaching out, you still haven't reached your office, ya fir abhi daily chores ke liye kuch bahar ho, ya aise drive pe nikle ho, I know. It's the first day of fall, to mausam badal raha hai. Narayan Shankar ki terminology mein kahe ki yaar, hawai ki rook badal rahi hai. तो अगर आप अभी भी ड्राइव कर रहे हो तो बी केयरफुल बिकॉज इफ यू एवर हैव अ कार एंड ट्रक और अ स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट देन डॉक्टर के साथ साथ एक और भी नाम आपको याद रखना है एंड दैट इज अटर्नी ओमर ख्वाजा और द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा बिकॉज यू नो आफ्टर एन एक्सीडेंट यू शुड ओनली बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हीलिंग योर सेल्फ रादर देन ये इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर काटना एंड पेपर्स संभालना अपने कंपेंसेशन के बारे में सोचना ये सारी चीज़ें लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा का सोचने दो यार तुम चिल करो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इफ यू हैव अ कंसल्टेशन विद अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम बिकॉज ही विल फाइट फॉर यू एंड मेक श्योर कि आपको आपका कंपेंसेशन राइटफुली मिले और मजे की बात यह है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है अंटिल एंड अनलेस यू विन द केस सो है ना हर तरफ से विन विन सिचुएशन कॉल करें 4693005046 दैट्स 4693005046 Or you can simply visit attorneyomer.com.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
10: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

48 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Rumita on her show Gup Shup Gali, jahan pe hum aaj couple fights ke baare mein charcha kar rahe hain. Yaar, how many types of fights do we have to face in our relationships? Or, you know, couples ke beech ek bahut funny problem hoti hai. Ek bande ko pakka yaad hota hai ki usne bataya tha. Aur dusre ko pakka yaad hota hai ki usse kabhi nahi bataya gaya tha. Especially weekend plans ke saath to ye bahut zyada hota hai. You know, Saturday ko kahi jana ho. Aur last time aapke partner bole, mujhe to pata hi nahi tha. बस वहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है शुरू. कब बताया था, कहाँ बैठे थे, डिनर चल रहा था या टीवी चल रही थी. सडनली मेमोरी टेस्ट हो जाता है. और व्हाट्सएप में अगर आपने कन्वर्सेशन किया तो वही रिप्लाई करके फुल स्टॉप दे के बताना कि यार यही तो बताया था. बट मुझे लगता है प्रॉब्लम कभी कभी मेमोरी की नहीं होती है, अटेंशन की होती है. हम फोन देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम ऐसे ही मुंडी हिला के हाँ हाँ कर तो देते, बट ब्रेन में इंफॉर्मेशन कभी कभी रजिस्टर होता नहीं. यार इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें झगड़ने का क्या है. बट मेरा सवाल यहीं पे आपसे भी है कि अगर आपने पार्टनर को कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई या बात बताई और जब बताई वो तब अगर फोन में बिजी था, डज दैट ऑफिशियली काउंट एज मैंने तो तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू दिस, और इसी बात पे झगड़ा. क्या ऐसा होता है आपके साथ? थिंक अबाउट इट एंड लेट्स गेट सम मोर म्यूजिक इनटू इट. यार गाने सुनते सुनते अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया करो. यार मुझे भी बताओ क्या फर्क पड़ता है.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita, only on aapka yahi Dallas ki dharkan, jahan pe Gup Shup chal rahi hai aaj about the couple fights. You know, couples jo hote, matlab agar aap ek relationship pe, zahir si baat hai, wahan pe you know, differences of opinions honge, wahan se ek jhagre ka issue hoga, aap kuch bologe, aapke partner kuch bolenge, aur aise hi chalte chalte ek dangerous territory mein hum ghus jate, kyunki after an argument sabse important cheez ye hoti hai ki who says sorry first. You know, some people genuinely cool down and apologize, aur aise bhi log hote hain jo log sirf ऐसा बोल के छोड़ देते, ओके फाइन सॉरी, विच टेक्निकली इज अ वर्ड और अ फ्रेज, बट इमोशनली इट इज एब्सोल्युटली नॉट एन अपॉलोजी. एंड देन देर इज अनदर वर्शन जो कि ये है कि आई एम सॉरी यू फेल्ट दैट वे. और इसका तो बिल्कुल मतलब रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में फर्स्ट हैंड रिजेक्शन है इस काइंड ऑफ अपॉलोजी का, कि प्लीज आप ऐसे मत जाहिर कीजिए कि आपने कुछ बोला बट नहीं नहीं मेरा तो वो मतलब नहीं था. एंड हियर्स व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग कि रिलेशनशिप में समटाइम्स सेइंग सॉरी फर्स्ट इजंट एडमिटिंग लाइक आई वाज 100% रॉन्ग. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं यार जो बोल सकते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मैं गलत था, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ. क्योंकि आप उस रिश्ते को वैल्यू करते हो, दिस रिलेशनशिप मैटर्स टू दैट पर्सन मोर देन एक्चुअली winning that argument. So DFW couples, who is the peacemaker in your house? Aap ho ya aapke partner, ya you both just behave normally after 3 ghante and pretend that ye jhagra ya ladai kabhi hui nahi thi, because that is also a very popular desi reconciliation technique. Chalo batao aapke ghar mein pehle sorry kaun bolta hai?

18 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. Achha, sabse pehle mujhe bataiye ki $85 a month aapke kis kis streams mein kharch hote hai? Ya ek weekend aap achha kahin se khana mangwa lo, अच्छी सी पिक्चर देख लो, शॉपिंग कर लो, कितने सारे मोमेंटरी खुशी आपके लिए हाजिर करता है ये $85. और अगर आपको मैं कहूँ कि ये $85 महीने में एक बार आपको खर्चना है और वो भी आपके अपने हेल्थ के लिए, तब आप क्या करोगे? बिकॉज पैशन हेल्थ डायरेक्ट एग्जैक्टली वही तो करता है. अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके हेल्थ नेटवर्क के बाहर है, देन यू कैन गेट दिस अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. बट मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. इसमें कुछ एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड है, तो इसीलिए आपको अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है, देन टेक्स्ट कीजिए या कॉल कीजिए 214-666-6259, that is 214-666-6259, or visit passionhealthphysicians.com. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको तो पता है कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज scattered and located across the DFW metropolitan. Chahe wo Irving ho, McKinney ho, Plano ho, Allen ho, ya fir ho Frisco. So Frisco and Irving location is now open on Saturdays and Sundays too. So agar throughout the week you're busy and you do not have the time to take care of your health and go and see the doctor, Saturdays and Sundays are also open option in Irving and Frisco location, that is Passion Health Primary Care for you.

0: यू नो रिलेशनशिप के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़े मोमेंट्स याद आते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडे, सरप्राइज गिफ्ट्स, रोमांटिक डिनर्स. बट एक्चुअली रिलेशनशिप बनता है उन बड़े मोमेंट्स से नहीं, वो बनते हैं एवरी डे की छोटी छोटी चीजों से, लाइक एनी रैंडम ट्यूजडे मोमेंट. सुबह किसी ने बिना पूछे कॉफी बना दी, आपका दिन खराब था तो सामने वाले ने बस सुन लिया, आप टायर्ड थे तो कोई एक काम क्वाइटली अपने ऊपर उन्होंने ले लिया. और हाँ, कभी कभी सुबह 7:30 बजे वही इंसान आपको इरिटेट भी करेगा और साथ 35 पे हंस भी देगा. आई थिंक दैट इज रिलेशनशिप, द रियल रिलेशनशिप. परफेक्ट नहीं बट फेमिलियर, कंफर्टेबल, अपना सा. उन्हीं के बारे में चर्चा होगी आगे आफ्टर दिस ब्यूटिफुल ब्रेक एंड अ शॉर्ट कमर्शियल वन.
1: दिल में आता हूँ, समझ में नहीं
2: कुछ डायलॉग.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
11: बेटा 95% आए?
12: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Ramita with the Gup Shup Gully. And Gup Shup ka abhi time hai aapke doston ka. Like aapke WhatsApp pe ek bhi aisa friends group zarur hai jahan har 2-3 hafte mein koi na koi message dalte rehta hai yaar. Guys, bahut time ho gaya, chalo milte hain. Aur definitely uske niche instantly 4 hearts. Yes, please, done, let's plan, energy full on. Phir, koi ek sensible banda ya dost aapse pooch le, kab, bas. Uske baad group mein aisi shanti, jaise kisi ne kuch poocha hi nahi. Because added friendship mein problem dosti ki nahi hai, apne calendar ki hai. Kisi ke bachcho ki activity, kisi ka office, kisi ke guests, kisi ka already booked weekend. Aur phir 3 mahine baad, वही एक सेम सवाल. गाइज सीरियसली बहुत टाइम हो गया, चलो मिलते हैं. बट एक चीज मुझे एडल्ट फ्रेंडशिप की अच्छी भी लगती है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे रोज बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है. कभी वीक्स निकल जाते, कभी महीने, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, आपकी बातचीत होगी, यू सिंपली पिक अप फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट. आपकी लाइफ में है ऐसा कोई दोस्त? और आपकी सबसे पुरानी दोस्ती कितने साल पुरानी है? बताओ बताओ, मुझे बताओ. 972-235-5555 is the studio number. This is Ramita and let's continue the Gup Shup.

यू नो, जब हम अपने कंट्री से दूर रहते हैं ना, तो फैमिली का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज एक्चुअल फैमिली तो हजारों मील दूर है. लेकिन यहाँ धीरे धीरे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ जाते जो टेक्निकली फैमिली नहीं है, बट प्रैक्टिकली फैमिली से कम भी नहीं होते. वो दोस्त जिसको इमरजेंसी पे आप बिना हेजिटेशन कॉल कर सकते हो, वो नेबर जो बोलता है भाई तुम ट्रैफिक में फंसे हो, कोई बात नहीं मैं बच्चों को पिकअप कर लेती हूँ, वो दोस्त जो आप अगर बीमार हो और आपके घर का डोर बेल बजाए तो सामने आपके लिए खाना बना के खड़ा हुआ हो, एयरपोर्ट जाना हो, फ्लाइट कितने बजे, फेस्टिवल आए और कोई बोले घर पे आ जाना यार, अकेले क्यों रहना है. आई थिंक स्पेशली यहाँ US में हम सब अपनी एक चोजन फैमिली बना लेते हैं, और कभी कभी वो रिलेशनशिप इतने नेचुरली बन जाते हैं कि याद भी नहीं रहता है कि कब अक्वेंटेंस से दोस्त बने और दोस्त से फैमिली. तो आज एक डेडिकेशन उन लोगों के नाम जो DFW में एक्चुअली में आपके फैमिली है, मतलब रिलेटिव नहीं है बट आपके फैमिली है. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

अगर बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का और दाल मखनी साउंड्स लाइक योर काइंड ऑफ डिनर देन और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास यू नीड टू हेड टूवर्ड्स तंदूरी फ्लेम विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड जी हाँ एंड देर इज अ ग्रैंड रीजन टू गो देर बिकॉज देर इज अ फ्लेम आर. अब ये फ्लेम आर क्या है. फ्लेम आर इज मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे से 8 बजे तक शाम को आपको मिलेगा एक मौका क्या विच इज यू कैन ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड रिसीव वन कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर दैट इज कंप्लीटली मुफ्त. एवरी मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड रिसीव वन कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर एट द फ्लेम आर इन तंदूरी फ्लेम जो कि लोकेटेड है गार्लैंड में एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड इट तंदूरी

यू नो गाना पुराना हो सकता है बट फीलिंग्स जो है ना इस गाने की बिल्कुल एवरग्रीन है. यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो. दिस इज गपशप गली विद मी रमिता. और अगर सजना हो तो फिर थोड़ा प्रॉपरली सजा जाए यार. और ऑनेस्टली ज्वेलरी में वो मैजिक होता है ना कि कोई सिंपल से लुक को भी ना वो एकदम स्पेशल बना देता है. और अगर आप भी अपने लिए कुछ स्पेशल ब्यूटीफुल एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन डिस्कवर श्री कृष्ण ज्वेलर्स एंड देयर स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स पोलकी एंड मोर विद डिजाइन्स फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी स्टाइल. विजिट देयर स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. दैट इज 13145 मेन स्ट्रीट सूट 220 इन फ्रिस्को. और कॉल 4302311111. और अब जरा रेडियो के पास ही रहना बिकॉज गिव अवे टाइम आ रहा है. फन पिज्जा किचन के $10 गिफ्ट कार्ड कुड बी योर्स. मूवी गेस करनी है बट क्लूज अभी नहीं दूंगी मैं. आई विल बी गिविंग यू 3 clues एंड विद दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डेसिफर एंड टेल मी द नेम ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द मूवी. एक और गाना उसकी इमीडिएटली बाद 3 clues मिलेंगे. सो बॉलीवुड एक्सपर्ट्स गूगल से दूर रहिए और दिमाग को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए. कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू फनीशा रेडियो 104.9 FM.

You're listening to 104.9 FM Funny Shot Radio. It is 12:12 by the studio clock. And yehi wo waqt hai jahan pe aapko milega 3 clues. And you have to guess this movie name. Aur guess karne pe aapko milega ek $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. So without further any ado, this is Ramita giving you the 3 clues for this movie of the day. So clue number 1 is... इस मूवी का हीरो मानता है कि एक ग्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए लाइफ में दर्द और हार्ट ब्रेक की जरूरी है. नंबर 2, हीरो का नाम जनार्दन है लेकिन दुनिया बाद में उसे एक दूसरे नाम से जानती है एंड ही बिकम्स अ पॉपुलर स्टार. क्लू नंबर 3, इस मूवी का जो म्यूजिक है इट इज टाइमलेस. आई मीन क्या ही बताऊं, एक के बाद एक गाने आर पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर एल्बम ऑफ दैट टाइम. अभी भी इफ यू फील सैड और इफ यू हैव दैट दिल का दर्द हार्ट ब्रेक वाला फेज इन योर लाइफ, आई थिंक दिस इज द गो टू एल्बम फॉर मोस्ट ऑफ अस राइट नाउ लिसनिंग टू इट ऑन दिस यू नो व्हाइल आई एम गिविंग यू दिस क्लूज. सो अगर आपको इस मूवी का नाम ऑलरेडी पता चल चुका है, स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555. कॉल मी एंड बताओ यार कौन सी मूवी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ.

0: बॉलीवुड की तरफ आपका ये जो आशिकी ना, इसके लिए भी मेरी जान जाएगी क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं यार. कितने रणबीर कपूर फैंस हैं DFW में. इट इज द मूवी नेम इज रॉक स्टार, और जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है विद सही जवाब, आई मीन कॉल भी पहले करना है जवाब भी करेक्ट देना है, उनका नाम है जनक चंपा नेरी. कंग्रेचुलेशंस जनक, यू विन दिस फन पिज्जा किचन गिफ्ट कार्ड ऑफ $10 विच यू कैन अवेल इन द फ्रिस्को लोकेशन एंड गो एंड टेस्ट देयर न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप. यार जाओ यार, पिज्जाज का अगर कुछ ट्विस्ट देखना है तो हेड ऑन टू फन पिज्जा किचन विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. और रॉक स्टार की जब बात हो ही रही है, मजाल है कि मैं कोई और गाना प्ले करूँ.
1: ये प्लान ठीक है या अभी भाग चले?
0: दिस इज गपशप गली विद मी रुमिता ओनली ऑन 104.9 FM फनी शेयर रेडियो.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
15: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
16: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
17: ki suhane safar ka saathi Fun Asia Radio.
18: Hello, namaste and good afternoon Dallas. This is your host Ayushi aur aap sun rahe hain Fun Asia 104.9 FM aur कैसा जा रहा है आपका ये नया हफ्ता? भाई इस हफ्ते में एक ही बदलाव हुआ है एंड दैट इज़ द वेदर हैज़ बिकम अ बिट कूलर एंड ऐसे प्यारे और अच्छे वेदर का इंतज़ार हम कब से कर रहे थे और एक ही गाना गुनगुनाए जा रहे थे भाई कि तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए, ऐसा ही वेदर चाहिए हमें।
19: जनबली तोड़ दे दुश्मन की नली।

0: पानी भरा है, अक्ल नहीं है क्या? पानी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? हाँ, पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगा, सीधा तीसरा विश्व युद्ध। न्यूज नहीं देखते क्या? अब तीनों पिटोगे मुझसे? आओ
1: भाभी, सही बोल रहे हैं भाभी जी, आप सही बोल रहे हैं।
2: सीने में उसके आग है।

0: So here was this beautiful track from the movie Dabang 3, and this was for Salman Khan for his Dabangai that he did on national television, taking stand for all the people who are being trolled every other day for some or the other reason. Anyways, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आपके सपनों का घर उतना ही करीब है जितना आप सोचते हैं. जी हाँ, अगर आप ड्रीम होम मॉर्गेज का के बारे में जान लेंगे तो आपके सपनों का घर आपसे और करीब हो जाएगा. सिंस 1998, ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग. आप इनको कॉल कर सकते हैं 9722455626 पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. और इसके साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बता दें कि इंडिया में 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी चल रही है, विच इज टेकिंग प्लेस इन गुजरात विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटिंग द ऑनर्स. एंड काफ़ी सारी खूबसूरत फिल्मों को अवार्ड मिला है. एंड द बेस्ट फिल्म, नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म हैज़ बीन गिवन टू आर्टिकल 370. एंड साथ ही यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का भी खिताब मिला है एंड नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म के लिए. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम आर्टिकल 370.
1: और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इसकी.
2: जूनी, फ्लाइट का टाइम हो गया.

0: क्या हुआ यार, वहां जाकर कॉल वॉल कुछ नहीं?
1: जमीन पर घसीट दिया यार जो।
2: एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस कश्मीर जाओ।
1: मुझे टीम में दो और लोग चाहिए।
3: क्या बात है, स्पेशल रिक्वेस्ट? इट फील्स लाइक आई हैव वॉक।

That was Yami Gautam, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म आर्टिकल 370 के लिए. द फिल्म हैज ऑल्सो वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एंड Yami Gautam फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस. एंड द बेस्ट एक्टर इज कार्तिक आर्यन फॉर द मूवी चंदू चैम्पियन. और इसका भी गाना आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन उसके पहले सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजय मिश्रा को अवार्ड मिला है फॉर द फिल्म भक्षक, रूपश्री वार्धके को मिथ्या के लिए एंड सचना नामेदास को महाराजा के लिए सपोर्टिंग एक्टर्स का ऑनर मिला है, वाइल राजकुमार पेरेस्वामी वॉन द बेस्ट डायरेक्शन फॉर अरमान. सो दीज वर द विनर्स फॉर नेशनल अवार्ड 2026. और ये अवार्ड गुजरात में दिया जा रहा है और भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड दे रही हैं. द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं. एंड हियर इज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी चंदू चैम्पियन.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने आपके लाइनअप करके रखे हुए हैं. वक्त हो रहा है आपकी फरमाइशों का. तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए. किसी की बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी को स्पेशल फील कराना है, देन वी आर हियर टू हेल्प यू. जस्ट कॉल एंड गिव इन योर रिक्वेस्ट एंड वी विल डेडिकेट दैट सॉन्ग टू योर लव्ड वंस. शो को आगे बढ़ाते हैं. अगले बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं. फनीशिया 104.9 FM पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को.

ये वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म एमएस धोनी। और अगले गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चल रहे हैं क्योंकि वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और आपके पसंद के गाने प्ले करेंगे। स्टूडियो का नंबर फिर से याद दिला रही हूँ, 9722355555। आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। कॉल करिए और अपनी फरमाइशें दीजिए, अपने पसंद के गाने सुनिए फन एशिया पर।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। Schedule your annual health checkup at Passion Health Primary Care. Along with blood pressure, blood sugar, cholesterol and weight checks, they also offer depression and anxiety screening, alcohol health assessment, fibroscan, vitamin B12 testing and many other preventive health screenings. Call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
11: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
13: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
2: Aakhir kya hai is biryani mein?
13: Dam mein narmi, masalon mein jadu aur har niwale mein nawabi swaad.
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
15: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
16: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
12: Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
17: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
2: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
18: Tracks that put you on the right track.
19: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पे जल्दी से गए और जल्दी से वापस आए और आपको अब सुनाएंगे आपके पसंद के प्यारे और खूबसूरत गाने फनेशा 104.9 एफएम पे। मैं हूँ आपकी होस्ट आयुषी, हर दिन 12:30 to 2:30 बजे तक आती हूँ, पर कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ और शोज में आने के कारण अपने स्लॉट को मिस कर गई थी कल, इसलिए आपको याद दिला दूं कि मैं अब हर मंडे से फ्राइडे तक फिलहाल कुछ दिनों तक आपके साथ हूँ फनीशा पे, और आप मुझे सुन सकते हैं, फरमाइशें दे सकते हैं, हमारी कुछ चटपटी बातें, कुछ बातों पे चर्चा, कुछ इंटेंस टॉक्स, कभी कुछ मज़ेदार चलता रहेगा फनीशा पर आपके होस्ट आयुषी के साथ। तो सुनना मत भूलिएगा, ट्यून इन करिएगा एवरी मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 12:30 to 2:30 PM। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गाना हमारे रेगुलर कॉलर सीनू की फरमाइश पर।

ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी रोग आपकी ही फरमाइश पर था और अगली फरमाइश भी लाइन अप करके रखी हुई है मैंने. शो को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता एंड एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. जल्दी से अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी सरफरोश.

है वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सर फरोश, और ये गाना भी आपकी ही फरमाइश पे था। ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सिलसिला चलता रहेगा फनीशिया 104.9 FM पे आपकी होस्ट आयुषी के साथ, क्योंकि इस सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश ले रहे हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और किसी का बर्थडे भूल गए हो, एनिवर्सरी भूल गए हो, अगर किसी से घर पे लड़ाई करके निकले हैं और उनको मनाना है, तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। पुराना है पर सबसे सबसे बेस्ट वे है टू यू नो सेंड योर मैसेज, सेंड योर थॉट्स एंड सेंड योर लव टू योर लव्ड वन। सो कॉल एंड गिव योर रिक्वेस्ट, स्टूडियो का नंबर 9722355555 है। आगे बढ़ने के पहले, अगले गाने की तरफ ले जाने के पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम इन अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन। Introducing Lenoxy Medical, founded by Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan med spa services, all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. Agla gana bahut hi pyara sa hai, bahut hi khoobsurat sa hai, and one of my favorites from that era where in 2000 ki film mein aayi hui thi, aur is gaane ki farmaish aayi hai Khushboo ki taraf se. So here is this beautiful track for you, Khushboo.

लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में था ये प्यारा और खूबसूरत सा गाना। एंड विद दिस डैलस वालों, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तैयार हो जाइए अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए। और अगर अभी तक आपने इसके टिकट्स नहीं लिए हैं तो प्लीज ले लीजिए, बिकॉज द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है डैलस में। एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सेप्टेम्बर 26th एंड 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स इन दैट आइकॉनिक वॉइस ऑल लाइव। टिकट अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS. I repeat, that's 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam Live, exclusive media partner, Fun Asia Network. तो जल्दी से ले लीजिए टिकट और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए विद द वन एंड ओनली सोनू निगम। अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं, अ ब्यूटिफुल ट्रैक For all my lovely listeners.

0: Heading towards a very short commercial break. जल्दी से वापस जाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और आपको सुनाएंगे कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने जो लाइन अप करके रखे हैं हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलर्स की पसंद पे, बिकॉज अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है जहां हम आपके पसंद के गानों की फरमाइश ले रहे हैं। स्टूडियो का नंबर याद दिला रही हूँ, 972-235-5555 है। कॉल करिए, अपने पसंद के गाने प्ले कर। यू आर लिस्निंग टू पनेशिया 104.9 FM विद योर होस्ट आयुषी।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
2: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
13: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे शो में जिसका नाम है गपशप विद आयुषी, मैंने दे दिया ये नाम. बट एनीवेज, हम फनी एशिया 104.9 एफएम पे बहुत ही प्यारे और सुंदर गाने सुन रहे हैं और आप लोगों की जो चॉइसेस है ना, बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है. वो जो 90s के नंबर्स जो है ना, उनमें जो जादू है और आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे गाने ढूंढ के लाते हो ना, वो दिल खुश कर देता है. ठीक उसी तरह से जैसे कभी कभी मेरी बातें आपका दिल खुश कर देती हैं, उम्मीद करती हूँ कि कर रही हूँ मेरी बातें आपका दिल खुश, वरना कहाँ यार, आप सुनोगे कहाँ. लेकिन आपको बटन टच नहीं करना है, बिकॉज चैनल चेंज नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा नंबर लेकर के आ रही हूँ अपने रेगुलर कॉलर्स जो है ना. ये मैं इनको बोलती हूँ, इनको आज एक नया नाम देती हूँ. ये दो हंसों का जोड़ा है, हमेशा साथ में फ़ोन करते हैं. कभी कभार दोनों अलग अलग भी होते हैं, पर एक ही दूसरे को गाना डेडिकेट करते रहते हैं. सो दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इज फॉर सोहेल एंड मरियम. बहुत ही प्यारा गाना चुना है आपने, वही प्ले कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए.

तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फिल्म खूबसूरत सी। संजय दत्त और उर्मिला है इस फिल्म में और इस गाने को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल मूवी। और ये मूवी का वो दौर था ना जहाँ पर पता नहीं क्यों ये होता था बट लड़कियों को बिल्कुल पहले घरेलू सलवार सूट में चश्मा लगा करके टाइट सी चोटी बांध के दिखाते थे। शायद हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी क्रिएट करते थे कि भैया जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या कमाल दिखने वाली है वो। और हम लोग भी बैठ करके घंटों तक, आधी फिल्म निकलने तक इंतज़ार करते थे कि बस अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब उर्मिला ना बिल्कुल सिंपल घरेलू लड़की से पटाखा बन के निकलने वाली है एंड उसको देखने के लिए हम लोग रहते थे बेकरार। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इट्स नॉट जस्ट खूबसूरत बट काफ़ी सारी ऐसी फिल्मों में जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, जो वो सडन चेंज होता था कैरेक्टर्स में, उसको देखने के लिए वी ऑलवेज यूज टू वेट एंड दिस वॉज वन ऑफ दोज मूवीज़। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की फरमाइश आ गई है और भाई मेरे कॉलर्स जो है ना मेरी ही तरह 90 के दशक के गानों के पुराने हैं, जो पुराने गाने हमारे टाइम के हैं उनके ही दीवाने हैं और ढूंढ ढूंढ के वही गाने ले आते हैं। अगली फरमाइश आई है किरण की, उस फरमाइश की तरफ चलेंगे लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि PMJ ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। Explore beautiful gold, diamond and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street, Frisco. Jewelry that tells your story. तो जरूर जाइए PMJ Jewels, Main Street, Frisco पर है ये। अगले गाने की तरफ, ये फरमाइश है किरण की और इन्होंने ढूंढा है फिल्म खुद्दार का बहुत ही प्यारा सा ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। आप भी कुछ ऐसे ही प्यारे खूबसूरत गाने बताइए जो कि शायद हम कभी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करना भूल जाते हैं। स्टूडियो का नंबर 972-235-5555।

चंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म का ये गाना खुददार 1994 की फिल्म है ये, और माहौल बन चुका है 90s के, नंबर आ चुके हैं और फरमाइशें भी आ चुकी हैं। अगला गाना फिर से है गोविंदा और करिश्मा ही की फिल्म से, राजा बाबू। तो उसकी फरमाइश की है हमारे कॉलर मोहल ने, सो दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू मोहल। थोड़ा सा मटक लीजिएगा, ठुमक लीजिएगा गोविंदा के स्टाइल में ये वाला गाना सुन के।

करिश्मा और गोविंदा कपूर की सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स राजा बाबू, 90s का नंबर, और मोहुल की फरमाइश पे था ये गाना। अगले गाने की तरफ चलते हैं, ये भी लाइनअप करके रखा है हमने अली की फरमाइश पे। बहुत ही प्यारा सा नंबर है, रोमांटिक सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ अलका याग्निक एंड सोनू निगम।

अलका याग्निक, सोनू निगम, और 2002 की फिल्म है. आफताब शिवदासानी और अमीषा पटेल हैं इस फिल्म में. अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपकी पसंद के गाने सुनेंगे. आधे घंटे और हूँ स्टूडियो में, एंटरटेन करते रहूँगी आपको ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ. लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पर. तो कॉल करिए और अपने पसंद के गाने प्ले करवाइए अपनी होस्ट आयुषी से. इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर ऑल माई लिस्नर्स.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
13: इट्स द टाइम टू क्रैक आउट. इट्स द टाइम टू
14: एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
15: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
16: लैपटॉप में.
15: इन्वेस्टमेंट?
16: गूगल ड्राइव.
15: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
16: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
15: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
17: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
18: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
17: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
20: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
21: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
22: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
21: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
12: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
23: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
24: अपनी होस्ट आयुषी को, और क्या बताऊं, मन खुश हो गया है बिल्कुल आप लोगों के प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश देख करके. इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 2:30 बजे तक ये सारे गाने प्ले कर पाऊंगी. अगर नहीं कर पाए होंगे तो माफी दीजिएगा, फिर करेंगे कल 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में, जहां पर आपके होस्ट आयुषी फिर से आएगी और आपके 90s और 2000s का जो ये प्यार है ना, उसको जरूर पूरा करेगी आपके पसंद के गाने प्ले करके. फिलहाल ब्रेक से वापस आ गए हैं और बस आधे घंटे और बचे हैं यहाँ पर. जल्दी से अगले गाने की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें साथ में कि देयर इज अ चांस फॉर यू टू विन $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. जी हाँ, चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे आ गया है. आप इनका स्पेशल थाली एंजॉय कर सकते हैं मंडे से फ्राइडे तक विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच. ऑफ मैकडर्मट रोड पे लोकेटेड है एलन में ये रेस्टोरेंट. इनका वेबसाइट है chandigarhbites.com, आप यहां जाके और जानकारी ले सकते हैं. फिलहाल ये गाना प्ले कर रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना है, मूवी का सही नाम बताना है और $10 ऑफ का गिव अवे लेके जाना है. तो स्टूडियो का नंबर है 9722355555. आई रिपीट इट वंस अगेन, 9722355555. जल्दी से ये गाना सुनिए, कॉल करिए और लेके जाइए ये बहुत ही आसान सा गिव अवे. बस मूवी का नाम बताना है आपको.

That was a beautiful track from the movie Main Prem Ki Deewani Hoon. Aur iske saath, is gaane ke saath hamara giveaway jata hai Maroof ko. Congratulations, Maroof. Zordaar taaliyan. Okay, so you get a giveaway from Chandigarh Bites, jahan pe aapko mil raha hai $10 off on your dine-in bill of $50. Chandigarh Bites chahiye, jo ki McDermott Drive pe hai in Allen, and you can take the giveaway from there and enjoy the delicious food. They have special thali from Monday to Friday. Har bar naya dish hota hai and the thali rotates for lunch every day, so congratulations. And moving towards the next song, because हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 10-15 मिनट हम और हैं आपके साथ और आपको आपके पसंद के गाने चलाएंगे. हमारे एक कॉलर जिन्होंने जवाब तो दिया था पर उनको गिव अवे नहीं मिल पाया, तो उनके पसंद का गाना ही क्यों ना प्ले कर दें. ब्यूटिफुल ट्रैक कमिंग फॉर यू.

श्रेया घोषाल और केके की आवाज में था ये बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द मूवी तारा रम पम। और देखते देखते 2 घंटे हो गए हैं खत्म और वक्त हो गया है मेरे जाने का और सुनहरी किरण के आने का। बहुत ही प्यारा सा शो लेकर के आती हैं किरण, एंड देयर इज अ सेगमेंट फॉर चिल्ड्रन एज वेल। तो बस कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया 104.9 FM, क्योंकि हमारे RJs बहुत मेहनत करते हैं अपने प्यारे खूबसूरत शोज आप तक लेकर के आने की और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलीवुड नंबर सुनाने की। तो चलिए, वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो टाटा बाय बाय एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो एट 2:30 PM शार्प, और 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं आपको एंटरटेन करूंगी कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों के साथ। फिलहाल आपको छोड़े जा रही हूँ बचना ए हसीनों के इस नंबर के साथ इन द वॉइस ऑफ सुखविंदर सिंह।

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं ही।
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
0: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just drops. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
17: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
18: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
19: Get ready for a brand new action packed experience, full of emotion and suspense.
2: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
19: The One, Force of the Forest,
8: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
19: On 25th September in cinemas near you.

And this one is coming for you from Passion Health Primary Care. Agar aapke paas insurance nahi hai ya phir Passion Health Primary Care aapke network mein shumar nahi hota, so then they are offering you a new program which is Passion Health Direct for just $85 a month. Ye membership aap khareed sakte hain aur is membership ke saath aapko milega primary care, preventive care, medication management, telehealth aur bhi bahut kuch. So, sabse pehle to ye ki this is not a health insurance plan. There are some eligibility requirements. So, aap unko call ya text kar sakte hain to find out more about this program, how you can benefit from it. 214-666-6259 unka number. 214-666-6259 ya phir passionhealthphysicians.com is where you need to log on. passionhealthphysicians.com. और आपको ये भी बताऊं कि उनकी अर्विंग और फ्रिस्को लोकेशन जो है वो आपके लिए सैटरडे और संडे को भी खुली हैं. सो चेक देम आउट, फाइंड आउट देयर टाइमिंग्स एंड विजिट देम एट योर कन्वीनियंस. तो ये तो हुई आपके लिए ये बात. अच्छा, अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए, देखिए कुछ लोग होते हैं जो स्टार बनने के बाद हीरो बनते हैं या हीरोइंस बनते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की कहानी स्टार बनने से पहले जो उनकी ज़िंदगी है वो एक स्टार जैसी थी, आप कह लीजिए एक ऐसी स्ट्रगल थी जिसको जिसके ऊपर पूरी एक कहानी बन सकती है. सो आज हम जाएंगे, थोड़ी सी बात करूंगी मैं शुरू में उस वक्त के बारे में जब अक्षय कुमार सुपरस्टार नहीं थे, जब उनके पास कोई बॉलीवुड का गॉडफादर नहीं था, जब वो बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीख रहे थे, जब वो वेटर और शेफ के तौर पर काम करते थे, और फिर एक दिन एक मॉडलिंग असाइनमेंट ने उनकी ज़िंदगी की वो कहते हैं ना डायरेक्शन बदल दी, दिशा बदल दी, उनका रास्ता बदल दिया. अक्षय कुमार के बारे में ये तमाम बातें, उनका असल नाम भी आपको बताऊंगी और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूंगी. मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक सुपरस्टार हो, कभी रेस्टोरेंट में वेटर थे, कभी मतलब कहीं पर मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, कहीं पर सिखा रहे हैं, और फिर ऐसे बड़े पर्दे पर आए कि अभी तक छाए हुए हैं. दिस इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट. यू ट्यून्ड इनटू अक्षय कुमार स्पेशल.

0: और अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जैसे कि कोई शादी ब्याह का इवेंट है, या फिर कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, या कोई भी और सेलिब्रेशन है जिसपे आप बहुत सारे गेस्ट बुला रहे हैं, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू. और इससे पहले कि आप स्ट्रेस करना शुरू करें कि जी खाना कहाँ से आएगा, डिकोर क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा सारा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए. आप अपनी पार्टी को एंजॉय कीजिए और वैनेसा इवेंट्स को सब कुछ हैंडल करने दीजिए. वैनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, वेन्यूज, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी और स्पेशली ब्रिलियंट केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. तो अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई आप कोट लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हरी बसेरा साहब ऑफ वैनेसा इवेंट्स को आप कॉल कर सकते हैं. दैट नंबर इज 469-442-8770. Once again, the name is Hari Basera of Vanessa Events. Call him 469-442-8770. Aap ke celebration partner hain Vanessa Events. They will make it such a soft and simple breeze for you. This event will be the happiest you will have. Contact them. Acha ji, Vanessa Events ke saath main aapko leke ja rahi hoon wapas Akshay Kumar ki journey ki taraf. Hum baat kar rahe the ek superstar banne se pehle उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ. तो अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया रखा गया. ऑफ कोर्स व्हेन ही वाज बोर्न, बॉलीवुड की ग्लैमरस वर्ल्ड से पहले उनकी दुनिया बहुत डिफरेंट थी. फ्रॉम दिल्ली, चांदनी चौक, स्पोर्ट्स, कराटे और फिर मार्शल आर्ट्स, ये उनकी जर्नी का हिस्सा था. ही स्टडीड एट डॉन बॉस्को स्कूल इन मुंबई और बाद में उन्होंने गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, बट उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की. हिज इंटरेस्ट इंक्रीजिंगली मूव्ड टूवर्ड्स मार्शल आर्ट्स, और मार्शल आर्ट्स की आई थिंक वो जो ट्रेनिंग उन्होंने शुरू में ली, वो जो डिसिप्लिन उनकी जिंदगी में आया, वो आज तक नजर आता है. अक्षय ने इंडिया में टाइक्वांडो की ट्रेनिंग ली और ब्लैक बेल्ट हासिल की. फिर वो थाईलैंड गए और फिर बैंकॉक में उन्होंने मार्शल आर्ट्स और मुएथाई सीखा. एंड यहाँ पे मतलब दिस वाज नॉट सम लग्जरी ट्रेनिंग वेकेशन, दिस वाज अ वेरी वेरी हार्ड वर्क दैट ही हैड टू डू. उनको अपनी फीस का भी इंतजाम करना था जो वो सीख रहे थे, उसके लिए उनको वहाँ रहना भी था, खाना पीना भी था, पैसे भी देने थे. मतलब ही सपोर्टेड हिमसेल्फ बाई वर्किंग जॉब्स इंक्लूडिंग एज अ शेफ एंड अ वेटर. तो ये हुई आपके लिए एक बिल्कुल अर्ली उनकी करियर की बात कि कहाँ से जिंदगी शुरू होती है. सब लोगों का अपना अपना स्ट्रगल होता है, बट अक्षय की स्ट्रगल इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल.
1: Let the bass kick.

जी हाँ, अक्षय कुमार की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इन्हीं ट्विस्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ये अगले 1 से 1.5 घंटा, जो मतलब 2 घंटे. मैं आपके साथ 5 बजे तक मौजूद हूँ और अराउंड 4:30 तक हम करेंगे इनके बारे में बात. अच्छा जी, कहानी चल रही थी आपके साथ कि बैंकॉक पहुँचे, फिर क्या हुआ, स्ट्रगल बिफोर स्टारडम क्या था बैंकॉक से. बैंकॉक में जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने फाइटिंग सीखी, वो जो ट्रेनिंग लेने गए थे, साथ उन्होंने वेटर का काम किया, शेफ का काम किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल ऑफ कोर्स बिकॉज ही हैड टू मेक एंड्स मीट एंड आल्सो पे द फीस एंड ऑल दैट. तो उसके बाद जब वो वापस आए बैंकॉक से मुंबई, तब तो बॉम्बे था वो, तो तब जो है उन्होंने मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया. जाहिर है जो सीख के आए थे उसी में उन्होंने काम करना था और यहीं से जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया. वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज नॉक वेरी सॉफ्टली, यू बेटर लिसन टू देम. सो इनके एक स्टूडेंट थे जो इनसे ट्रेनिंग ले रहे थे मार्शल आर्ट्स की, और उनके फादर ने अक्षय को देखा और उनसे कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग, यू हैव अ ब्यूटीफुल फिगर एंड आई थिंक यू कैन बी एन अमेजिंग मॉडल. तो वहां से अक्षय को ये एक आप कह लीजिए पहला स्पार्क दिमाग में आया कि आई गेस आई कैन ट्राई दैट. और फिर अक्षय ने मॉडलिंग का स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपना अपने आप को प्रिपेयर करना कि आई कैन बी अ मॉडल. मॉडलिंग गेव हिम हिज फर्स्ट एक्सपोजर टू कैमरा एंड एडवर्टाइजिंग, एंड तब उन्होंने ही ऑल्सो वर्क एज एन असिस्टेंट

0: टू फोटोग्राफर जयेश सेठ, जिन्होंने उनका अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया. आई थिंक उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, आप मेरा पोर्टफोलियो बना दें. फिर क्या हुआ उनकी जिंदगी में, ये कहानी ब्रेक के उस पार.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
1: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
2: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: RCR straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
7: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
8: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
9: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
10: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

अक्षय कुमार पे हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज स्पॉटलाइट डाली है राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ 5 बजे तक मौजूद हूं. और जी बात यहां तक पहुंची थी कि क्या हुआ जब वो थाईलैंड से वापस आए अपनी सारी ट्रेनिंग मुकम्मल करके. सबसे पहले तो उन्होंने आके कैलकटा में जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, फिर ढाका में एक होटल में एज अ शेफ काम किया, उसके बाद दिल्ली में उन्होंने जेवर बेचा. मतलब आप काम चेक कीजिए क्या क्या काम उन्होंने किए अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए. दैट इज द जर्नी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एंड दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन इट. सच एन इंस्पिरेशनल जर्नी. और उसके बाद व्हेन ही रिटर्न टू बॉम्बे तो उन्होंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का, मतलब सिखाना शुरू किया. वहां पर उनके एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग का मशवरा दिया. ही टुक द मशवरा एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स इट. और फिर उन्होंने फोटोग्राफर जायेश शेठ के साथ 18 महीने काम किया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना पोर्टफोलियो बना सकते. तो उन्होंने 18 महीने उनके साथ काम किया और 18 महीने का टाइम लगा के अपना पोर्टफोलियो बनाया. उसके बाद उन्होंने जब डिफरेंट वेरियस जगहों पे पोर्टफोलियो भेजना शुरू किया तो उन्हें एड्स की ऑफर मिलना शुरू हुई. बैकग्राउंड डांसर के तौर पर उन्होंने काम किया कुछ फिल्मों में. और पहली जो उनकी अपेयरेंस थी, अगर आप कह लीजिए बड़े पर्दे पर, वो 1987 में थी मूवी आज में, जब वो एक कराटे इंस्ट्रक्टर का उन्होंने रोल किया था, छोटा सा रोल था. और फिर जो है ही लेटर अडॉप्टेड द स्टेज नेम अक्षय कुमार, क्योंकि वो इंस्पायर्ड हुए थे कुमार गौरव के अक्षय के कैरेक्टर से. तो यहां से हमें पता लगा कि उनका नाम जो है वो अक्षय कुमार, राजीव हरि ओम भाटिया से अक्षय कुमार कैसे पड़ा. एक सुबह जब उन्होंने एक एड शूट के लिए जाना था तो उनकी फ्लाइट मिस हो गई, क्योंकि उनको लगा कि शूट जो है वो शाम 7 बजे का है. अपेरेंटली वो शूट सुबह 7 बजे का था. तो कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन हुई कि ही मिस द फ्लाइट और उनको अपने हाथ सामने से अपनी, ऐसे कहते हैं ना, जैसे पैरों तले ज़मीन निकलती नज़र आई कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा इतना इंपॉर्टेंट शूट मिस हो गया है. देन ही कहते हैं कि उसी दिन वो एक फिल्म स्टूडियो गए, वहाँ अपना पोर्टफोलियो लेके गए और अपना पोर्टफोलियो दिखाया. एंड एज लक वुड हैव इट वो फ्लाइट इसीलिए मिस हुई थी बिकॉज देयर वाज समथिंग रियली बिग लाइंड अप फॉर हिम. और उनको मिल गया उनका लीड रोल, प्रमोद चक्रवर्ती ने दिया. एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड appearing in films. So, कभी कभी opportunities जो miss हो जाती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि कोई बहुत बड़ी और बेहतर opportunity हमारा इंतजार कर रही होती है. So, all we have to do is just keep working towards it.

और वक्त आ चला है आपके लिए डक टाइम की तरफ से गिव अवे लाने का। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि डक टाइम अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है एंड यूजुअली एनिवर्सरी पे हम तोहफा देते हैं, मगर डक टाइम आपको तोहफा दे रही है। दे आर ऑफरिंग यू 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग अगर आप ये गिव अवे जीत जाते हैं। सो दिस गिव अवे इज यू नो वट दे आर ऑफरिंग यू। 50% ऑफ मिलेगा आपको डक्ट क्लीनिंग पे फ्रॉम डक्ट टाइम अगर आप ये गिव अवे जीते हैं। गिव अवे का सवाल आप बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डक्ट क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है। जी, प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग हमें बहुत हेल्प करती है हमारे डक्ट से डस्ट रिमूव करने में, क्लॉग्ड वेंट्स को साफ करने में, एयर फ्लो को इम्प्रूव करने में, फायर हैजर्ड्स को कम करने में, और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे मसले जो हमें पता भी नहीं होता कि डक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, खराब डक्ट के साथ, उसको सारे को मसलों को हल कर देती है डक्ट टाइम। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं बाय contacting Jeetu Patel at Duck Time. That number is 972-877-2500. So do contact them, book your appointment and get your ducks clean. And if you want to win this $50 off on duct cleaning from Duck Time, then मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक सवाल। सवाल क्या जी? बहुत सिंपल सा। आप मुझे ये बताइए कि अक्षय कुमार ने अपने जो उनके करियर में 1991 से उनका करियर शुरू हुआ फिल्म सुगंध के साथ। सुगंध फिल्म में वो हमें नजर आए, देखिए कि उनके साथ नजर आए थे राखी जी, उनके साथ थी, साथ शांति प्रिया थी, और उसके बाद उसी साल उनकी फिल्म डांसर आई, फिर उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी में काम किया। खिलाड़ी के बारे में बात तो जरूर करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने अपनी करियर का पहला नॉमिनेशन पाया फ्रॉम फिल्म फेयर। आपको मुझे उस फिल्म का नाम बताना है और ये बताना है कि उसमें उनकी लीडिंग लेडी कौन थी। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द मूवी फॉर विच अक्षय कुमार गॉट नॉमिनेटेड फर्स्ट टाइम फॉर बेस्ट एक्टर बाय फिल्म फेयर अवार्ड्स, द नेम ऑफ द मूवी एंड द नेम ऑफ द लीडिंग लेडी। देखो जरा देखो।

और सही जवाब था जी ये दिल लगी। काजोल के साथ साथ सैफ अली खान भी थे इस फिल्म में। दैट वाज द मूवी जिसके लिए अक्षय कुमार ने पाया अपने करियर का पहला नॉमिनेशन फ्रॉम फिल्म वेयर। ऑल्दो ही डिडंट विन इट बट ही गॉट नॉमिनेटेड एंड आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। इट वाज अ काइंड ऑफ एन कॉपीड मूवी आप कह लीजिए एक हॉलीवुड फिल्म की। नाम था उस मूवी का सबरीना। सबरीना की थी ये मूवी कॉपी। लेकर आई थी आपके लिए डक टाइम की तरफ से 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग। और आपसे यही सवाल पूछा था कि इस मूवी का नाम बताइए और कास्ट का हीरोइन का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स। और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं जी कॉलर नंबर 4 व्हिच इज शिखा भंसल। शिखा कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिवअवे। मैं जी आपका जिस तरह आपकी सीक्वेंस आती है मैं एक फॉर्मूले में डाल के आपका नंबर निकालती हूं। मैं विनर सेलेक्ट नहीं करती, आपकी लक आपका विन सेलेक्ट करती है। सो प्लीज यू नो मेरा बस चले तो मैं सभी को गिफ्ट दे दूं। तो जी शिखा हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर डक टाइम पहुंचाने का। दे विल होपफुली गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग योर विन। यू हैव वन 50% ऑफ ऑन योर डक्ट क्लीनिंग। तो इसी के साथ अभी मेरे पास एक और गिव अवे आपके लिए लाइंड अप है। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए इस म्यूजिकल जर्नी को जो हमें दी है अक्षय कुमार ने और आप सब जिन्होंने फोन कॉल किया। थैंक यू।

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 9728971530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
3: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज थ्री ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज थ्री ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant, entertainment, luxury or excitement, sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen

0: Cameron. Different means crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर FunAsia नेटवर्क।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Bollywood Spotlight सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण पे और जी आगे बढ़ते हुए आज हमने Spotlight डाली है अक्षय कुमार पे but before we move forward कुछ पैसों की बात हो जाए आपके साथ कि जी अगर आप अपनी finances का ख्याल रखना चाहते हैं you want to make personalized strategies या फिर आप portfolio management करना चाहते हैं या आप alternative investments में interested हैं real estate में interested हैं या फिर retirement planning आप करना चाहते हैं इन तमाम चीजों के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं CPA सुधीर पाए ही इज विद माय टाइम एक्विटी तो माय टाइम एक्विटी वो जगह है वो वेबसाइट है mytimeequity.com जहां आप लॉग इन कीजिए चेकआउट कीजिए कि माय टाइम एक्विटी आपको क्या क्या ऑफर कर रही है क्या क्या सर्विसेज दे रही है CPA सुधीर पाए आपके साथ पर्सनलाइज्ड आपकी रिक्वायरमेंट्स को सुनेंगे भी और आपके लिए सोल्यूशंस भी डिजाइन करेंगे लेट मी गिव यू वन नंबर एज वेल जिस पे आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और वो नंबर है 4697021272 4697021272 इज दैट नंबर वेयर यू कैन गिव हिम अ कॉल अच्छा जी ये तो हुई आपसे माय टाइम एक्विटी की बात कमिंग बैक टू अक्षय तो सौगंध से अक्षय ने अपने करियर का आगाज किया बहुत ज्यादा ऑब्वियसली हिट तो नहीं हुई मूवी लेकिन फिर भी ही वॉज देयर ही स्टार्टेड एज अ हीरो एज अ लीडिंग पर्सन और फिल्म इंडस्ट्री को मिल चुका था उसका एक नया चेहरा और उसके बाद 1992 में वो कहते हैं ना एज लक वुड हैव इट अब्बास मस्तान ने एक मूवी बनाई नाम था उस मूवी का खिलाड़ी और खिलाड़ी में हमें नजर आए मिस्टर खिलाड़ी जी हाँ अक्षय कुमार हमें नजर आए खिलाड़ी में एंड खिलाड़ी बन गई उनकी पहचान खिलाड़ी बिकेम हिज फर्स्ट मेजर कमर्शियल सक्सेस और ना सिर्फ ये बल्कि खिलाड़ी ने इस्टैब्लिश किया अक्षय कुमार को एज एन एक्शन ओरिएंटेड लीडिंग मैन हालांकि मुझे अंदाजा नहीं है कि खिलाड़ी उन्हें एक्शन ओरिएंटेड क्यों इस्टैब्लिश करेगी बिकॉज खिलाड़ी वॉज अ कम्प्लीटली मिस्ट्री और सस्पेंस मूवी थी और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्शन वैक्शन तो था नहीं लेकिन कहानी इतनी जोरदार और दमदार थी कि मजा आ गया मूवी खिलाड़ी देख के अक्षय के पास एक चीज तो ऑलरेडी थी जी दैट वॉज ब्रिलियंट फिजिकैलिटी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग थी उनके पास एक्शन करने का कॉन्फिडेंस था और कैमरे के सामने उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी तो बहुत जल्द ना खिलाड़ी से जो जर्नी शुरू हुई तो फिर वो जर्नी बिल्कुल नहीं रुकी दीदार फिल्म आई उसके बाद दिल की बाजी उसके बाद वक्त हमारा है उसके बाद ऐलान उसके बाद ये दिल लगी जिसके लिए उन्होंने पहली नॉमिनेशन पाई अपने फिल्म फेयर की जय किशन और फिर आई लाइन से लेके जैसे कि मोहरा और साथ ही साथ मैगी

All right, जी, thank you for your phone calls and for telling me so many stories. अभी हमें हमारी बहुत प्यारी कॉलर, बहुत रेगुलर कॉलर जलपा का फोन आया और उन्होंने भी बताया कि कॉफी विद करण पे अक्षय कुमार जब अपनी मिसेस के साथ आए, यानी कि ट्विंकल खन्ना के साथ, तो वहां बैठ के ट्विंकल ने उनसे कहा कि अगर मतलब आपको तो कोई ऐसा खास अवार्ड नहीं मिला और कोई लिस्ट भी नहीं है, हालांकि नॉमिनेशन अक्षय को काफी मिली थी, लेकिन कुछ इस तरह का कि देखो मेरे फादर को तो कितने सारे अवार्ड मिलते, भाई अब राजेश खन्ना से कौन मुकाबला करेगा, लड़की ये कौन, ये कैसा मुकाबला, क्या कंपैरिजन है ये. लेकिन बहरहाल तो अक्षय कुमार ने इसका जवाब कुछ ऐसे दिया कि काम मिलता रहना चाहिए और पैसे आते रहने चाहिए, अवार्ड ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ता. वेल दैट इज जस्ट अक्षय कुमार, एब्सोल्युटली गाय नेक्स्ट डोर विद सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी. जब आपको आपने स्ट्रगल किया हो और आपको पता हो कि यू हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड टू पुट दैट फूड ऑन योर टेबल, दैट इज वेन दीज थिंग्स रियली डोंट मैटर. और ये हमें इस जवाब से डेफिनेटली अक्षय की पूरी मेंटालिटी और जो है उनका लाइफ स्टाइल हमें पता लग गया. वर्क and right compensation is what he is always looking for. Acha ji, ye to hi, thank you so much Alpa for sharing that story with us. Aur ab main aapse barista हाउस की तरफ से एक आपके लिए गिव अवे लाई हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बरिस्ता हाउस, जो कि एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है डेंटन में, वो अब आपके डाइनिंग प्लेजर के लिए फ्रिस्को में आ चुका है. ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. आप यहाँ खा सकते हैं बहुत कुछ बेहतरीन, उनके मेन्यू में अवेलेबल है इंक्लूडिंग हैदराबादी बिरयानी एंड नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डिजर्ट्स, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. यू हैव टू गो देयर, विजिट देम. 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को पे लोकेटेड. दिस इज बरिस्ता हाउस. अच्छा, और अब ये जो गिव अवे है आपके लिए, ये है जी $20 ऑफ का गिफ्ट कूपन, यानी कि $20 का गिफ्ट कूपन है ऑन योर डाइन इन ओनली. सो आप जाइएगा वहां पे, यू विल डाइन इन एंड यू विल गेट द $20 ऑफ इफ यू आर अ विनर ऑफ दिस गिव अवे. बात हो रही थी कि ताना मिला था उन्हें उनकी बेगम की तरफ से कि आपको अवार्ड्स नहीं मिले, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, अक्षय कुमार को अपना जो पहला अवार्ड था वो कौन सी मूवी के लिए मिला था? फिल्म फेयर की बात हो रही है. पहला अवार्ड, नॉमिनेशन तो आपने मुझे बता दिया, ये दिल लगी के लिए उन्हें मिला 1995 में फॉर बेस्ट एक्टर. अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी फिल्म के लिए, किस कैटेगरी के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का अवार्ड आखिर जीत ही लिया. बड़ी हैरानी वाली कैटेगरी है ये, जब आप देखिएगा. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट अवार्ड दैट अक्षय वन एट फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड व्हाट मूवी वाज दैट एंड व्हाट टाइटल, या आप कह लीजिए अवार्ड का नाम क्या था, किसके लिए उन्हें अवार्ड मिला. दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी.

जी हाँ, आइया के साथ मैंने गाना भी उसी फिल्म का आपके लिए लगा दिया था जिसके लिए उन्होंने अपने करियर का पहला अवार्ड जीता था, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए आपके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर आपको दे देते हैं जी. अजनबी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने जीता था अपना पहला अवार्ड, और वो बेस्ट हीरो के लिए नहीं था, दैट वॉज फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, यानी कि बेस्ट विलन के लिए उनको ये अवार्ड मिला था. 2001 में अजनबी फिल्म रिलीज हुई थी. 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अक्षय कुमार वॉज अवार्ड

एग्जीक्यूटिव रोल यानी कि बेस्ट विलन के लिए उनको ये अवार्ड मिला था. 2001 में अजनबी फिल्म रिलीज हुई थी. 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अक्षय कुमार वॉज अवार्डेड विद दिस बेस्ट विलन अवार्ड. अच्छा, ये तो हुई आपके लिए करेक्ट आंसर. अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं, बरिस्ता हाउस की तरफ से, जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड है, 6377 कस्टर रोड, आपके लिए आया था ये $20 का गिफ्ट कूपन ऑन डाइन इन ओनली. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. सिद्धार्थ, ऋचा, पल्लवी, इंद्रप्रीत, संतोष, श्रीराम और भी चार पांच हमारे पास नाम लाइंड अप हैं. तो जी, एज ऑलवेज आपका नंबर जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो एक मैथ के फॉर्मूले में डलता है. आपकी लक आपके विन को अनाउंस करती करती है. मैं बिल्कुल विनर नहीं चुनती जी, मेरे नज़दीक आप सब विनर हैं क्योंकि आपने बहुत दिल से वो टाइम निकाला और हमें कॉल किया और पार्टिसिपेट किया. थैंक यू फॉर दैट. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं जी संतोष शर्मा. संतोष, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने बरिस्ता हाउस की तरफ से ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए. और फिर आपके पास 7 दिन का वक्त है टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 गिफ्ट कूपन ऑन डाइन इन ओनली. और आप तमाम लोग एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग.

0: offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
7: Call 857-891-8942 today.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
10: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
11: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
12: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
11: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
12: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
13: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
11: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
22: डील कहाँ?
11: सिंपल, पासया पे। इंट्रोड्यूसिंग पासया, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पासया, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
22: डाउनलोड पासया, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
23: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
24: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
25: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
26: Bindas bolo,
0: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो,
1: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
2: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

आप सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण में बॉलीवुड स्पॉटलाइट ट्यूजडे स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूं. और आज हमने स्पॉटलाइट डाली है जी द डायनामिक हैंडसम द चार्मिंग अक्षय कुमार पे. और आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद उनकी फिल्मों के बारे में बात करूं, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट का इंसिडेंट है जी, कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल क्योंकि आप कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द निटी ग्रिटीज ऑफ दिस सिचुएशन जो हमें कई बार मालूम भी नहीं होता. लॉयर्स डेफिनेटली कैन They know a lot about it. और एक ऐसे lawyer हैं जो आपको help कर सकते हैं इस situation में, and that is attorney Umar Khwaja. Attorney Umar Khwaja और उनकी team ना सिर्फ ये कि आपका case file करेगी और आपको best compensation दिलाएगी, the best that you can get. जो बेहतरीन बात है इस सारे में वो ये कि आपको कुछ pay नहीं करना जब तक कि आप इस case को जीत नहीं जाते. So इस मुश्किल वक्त में आपके लिए एक राहत का पैगाम है ये. Attorney Umar Khwaja से contact कीजिए for a consultation and check out how you can claim or get the best for whatever the scenario is going on for you. 469-300-5046 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर attorney Omar OMAR attorneyomar.com is where you need to log on. अच्छा, 1990s में अक्षय कुमार का नाम ग्रेजुअली एक ब्रांड बनता जा रहा था. खिलाड़ी फिल्म से जो कहानी शुरू हुई, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी की पूरी ब्रांड. जैसे गोविंदा को मिला था कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन तो खैर उन्होंने की नहीं, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, इस तरह नंबर वन का मोस्टली ब्रांड गोविंदा को मिल रहा था, वैसे ही खिलाड़ी का ब्रांड जो है वो अक्षय कुमार को मिल गया. और खिलाड़ी सीरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बनी 90s के दौर की. लेकिन उसके साथ साथ अक्षय कुछ और फिल्मों में भी काम कर रहे थे, जैसे कि मोहरा हुआ, सुहाग हुआ, जानवर हुई. और ऐसा लग रहा था कि अक्षय ने अपने आप को कंप्लीटली एक एक्शन हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश कर लिया है, मगर हकीकत ऐसी नहीं थी, बिकॉज अक्षय की नजर थी रोमांटिक हीरो बनने की तरफ भी. वो गामजन थे और फिर उन्होंने काम किया फिल्मों में जैसे कि ये दिल लगी, धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन, और इन फिल्मों से उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक अपना नया इमेज, अ सॉफ्ट रोमांटिक हीरो का. सो कहानी इसी तरह है. वैसे खिलाड़ी की मैंने बात की आपसे, तो चलिए खिलाड़ी 786 का ये नंबर आपके लिए.

अच्छा जी, एक बड़ी ही मज़े की आपको जगह के बारे में बताना है, एंड दैट इज़ पेज 3 E3। पेज 3 E3 वो जगह है जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन मुंबई और लखनऊ के फ्लेवर्स। दे आर लोकेटेड एट हब 121 इन मिकनी। अच्छा, अगर आपको चाट खानी है तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। अगर आपको सैंडविचेस खाने हैं, रोल्स खाने हैं, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। अगर आपको ब्रिलियंट स्नैक बाइट्स खाने हैं, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। और आपको अगर प्रॉपर एंट्रीज जैसे कि स्मोकी तंदूर डिशेज खानी है, बिरयानी खानी है, तो दिस इज़ द प्लेस टू गो। और अगर आप ज़बरदस्त हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स को को हासिल करना चाहते हैं या पीना चाहते हैं, तो पेज 3 ईटरी यही वो जगह है जहां आपको जाना है। तमाम चीजें मिलेंगी और इसके साथ मिलेगा आपको एम्बियंस, एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, जहां और प्लेट ऐसे सज के आती है खूबसूरती से, जैसे कोई जेवर सज के आया हो आपके लिए। और पहले तो आप उसे देखिए, दिल करता है जरा एक दो तस्वीरें ले ली जाए, उसके बाद खाना खाया जाएगा। दिस इज पेज 3 ईटरी फॉर यू। डू विजिट देम, दे आर लोकेटेड ऑफ इन हब 121 इन मिकनी। और आप उनका मेन्यू जरूर एक्सप्लोर कीजिए बिफोर यू गो। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड टू चेक आउट देयर मेन्यू एंड चेक आउट देयर वेबसाइट टू सी व्हाट दे आर ऑफरिंग। दैट वेबसाइट इज page3eatery.com। वंस अगेन, इट इज page3 एज अ नंबर 3 eatery.com। अच्छा, यहाँ दो जब शुरू में उन्होंने एक्शन मूवीज में काम किया, फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रोमांटिक मूवीज में ढाला विद मूवीज लाइक धड़कन एंड अंदाज एंड नमस्ते लंदन, और उसके बाद साथ ही साथ उनकी मुझसे शादी करोगी, एतराज एक बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी जिसमें ड्रामेटिक रोल था उनका। तो इस इन फिल्मों से अब उन्होंने रोमांस भी इस्टेब्लिश कर लिया, फाइटिंग भी, मतलब एक्शन भी इस्टेब्लिश कर लिया। अब इंसान सोचे कि अब और क्या करना है, इन्होंने अब इसी रोल को या इसी इमेज को लेके चलेंगे। बट देन आया हेरा फेरी का दौर, और उसके बाद से इट वॉज नेवर द सेम अगेन। अक्षय कुमार बिकेम दैट आप कह लीजिए कॉमिक हीरो बन गए वो, या वो ऐसे एक बंदे बन गए जिनके ऊपर कॉमेडी बड़ी सूट की और बड़ा मजा आया देख के। और उसके बाद से आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी कॉमेडी करनी छोड़ी है। सो दिस इज पोस्ट हेरा फेरी लाइफ। हेरा फेरी आई थी 2000 में, 2000 में, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो अक्षय कुमार इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दैट्स व्हाट वी कैन से।

हेरा फेरी में अक्षय कुमार ने जो रोल किया वो था जी राजू का, और उसने उनकी पूरी इमेज को परमानेंटली बदल के रख दिया. अलॉन्ग साइड परेश रावल एंड सुनील शेट्टी, ही बिकेम वन ऑफ दिस रोल बिकेम वन ऑफ द डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर. और उनकी 2000 से ऑनवर्ड्स की जो 2000s की फिल्मोग्राफी है वो इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल कॉमिक रोल्स पे बेस होने लगी. सो चाहे वो राजू हो, मतलब ये हेरा फेरी में राजू, श्याम, बाबू राव, और फिर वो फोन कॉल, और कौन भूल सकता है, अरे उठा ले रे बाबा वाला जो वो बोलते हैं. तो इट वाज जस्ट, वैसे हेरा फेरी 2 भी आई और मेरा ख्याल 3 भी पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन मेरे लिए जो टॉप ऑफ द लाइन थी वो हेरा फेरी थी, द वेरी ओरिजिनल नंबर 1 हेरा फेरी. अच्छा जी, इसी के साथ फिर यू नो सुपरस्टार स्टारडम आप कह लीजिए, शाहरुख खान इनका, अक्षय कुमार का शुरू हुआ, सुपरस्टार ईयर्स शुरू हुए, जिसमें उनको कहा जाने लगा द हिट मशीन. जी हाँ, ये था वो हिट मशीन एरा, कह लीजिए आप 2007 से लेके 2012 तक का, बहुत सारी हिट पे हिट थी अक्षय कुमार ने.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. It's the time to clock out.
3: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
1: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
2: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
7: Call now 945-527-0897 or visit astrologer ishwar.com.
8: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
3: Kitni lambi list hai?
10: Bas, 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
12: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
3: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
12: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
3: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
14: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
15: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
14: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
16: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
14: The One, Force of the Forest,
17: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
14: On 25th September in cinemas near you.
18: कितने आदमी थे?
19: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: 104.9 FM फानीशेयर रेडियो बिल्कुल सही जगह पे आप मौजूद हैं और चैनल बिल्कुल सही. मैं हूँ किरण. दिस इज आफ्टरनून राइट टाइम विद सुनहरी किरण. और आफ्टरनून राइट टाइम में टाइम हो चला है जी आपको कनेक्ट करने का हमारे उरा डेट रिलीफ सेगमेंट के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमन फ्रॉम उरा डेट रिलीफ, जो हमें बताएंगे कि हाउ कैन उरा help us in making the right choices, financial choices, especially where debt is concerned. Let's welcome him on the airwaves of Phanisha. Good afternoon, Amanji. How are you doing?
1: Good afternoon, Phanisha. सुनने वाले सभी listeners को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. महीना खत्म होने वाला है, 7-8 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट. और लेकिन फिर भी याद करा दूं बहुत सारे दोस्तों की, अगर मिनिमम पेमेंट ड्यू है इस कमिंग वीक में तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार इस डील को सुन लीजिए, क्योंकि डील वर्ड हमारे लिए इस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. डील ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दे दे के परेशान हो चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड उतर ही नहीं रहे, वो क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि 40% 28% के आसपास इंटरेस्ट आप पे करते हैं. तो अगर आप परेशान हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, एक बार ट्राई कीजिए उरा को कॉल करके. उरा आपके इन सारे क्रेडिट कार्ड की पहले तो एक पेमेंट बना देगा, उसमें से आधा कर्जा आपका माफ हो जाएगा जो आपने नहीं देना है, और आधा अगर माफ हो गया बाकी जो बचेगा उसकी आसान सी किस्तें बन जाएंगी. सो आपका कर्जा भी माफ हो गया और इंटरेस्ट फ्री पेमेंट भी बन गई, तो जल्दी से आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि पर्सनल क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड, स्टोर क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो. इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल लोन भी है, अगर आपका कोई लोन है या फिर गाड़ी जो रिपोजेस हो गई है, गाड़ी जो टोटल हो गई है, उन लोन्स को भी नेगोशिएट करके माफ करवाना चाहते हैं, तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, ट्राई कीजिए, समझिए कि किस तरह ये प्रोग्राम वर्क करता है. इससे आपका क्रेडिट भी जल्दी से बूस्ट अप करेगा, स्कोर भी इंप्रूव होगा, और आपका डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करने से आपको नए लोन आराम से मिल जाएंगे, हाउसिंग लोन आराम से मिल जाएगा, रीफाइनेंस आराम से हो जाएगा. सो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914 1-888-888-9914. और अगर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, कॉल मी 916-776-3555 और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. वहां पर भी आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे. लेकिन मिनिमम पेमेंट करने से पहले ट्राई कीजिए ताकि आपका आधा कर्जा माफ हो जाए.
0: There you go. Thank you so much, Amanji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thank you.
0: Have a good one.

और इसी के साथ आपको करेंसी की अपडेट देते चलें जी कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87, ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे स्टैंड कर रहा है, इंडियन रुपी 95.57 पे ट्रेड कर रहा है, कनेडियन डॉलर 1.40, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.17 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर, नेपालीज रुपी 152.99, जबकि बांग्लादेशी टका 122.83 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. एंड विद दैट इस गाने के उस पार मैं दूंगी आपको गोल्ड प्राइस अपडेट यानी कि सोने का भाव आज क्या रहा.

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट देने का वक्त आ चला है आपको जी. आज यानी के ट्यूसडे सितंबर द 22nd इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,358.03 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $140.11. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 38 सेंट्स का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $11.80 का इजाफा हुआ. पूरे डेढ़ हफ्ते में ये पहली बार हमने इजाफा देखा है गोल्ड की प्राइस में, वरना कमी ही कमी हो रही थी. सो दैट इज वन न्यूज फॉर यू दैट यू नीड टू, अगर आप गोल्ड को यू नो फॉलो करते हैं तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. बट दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. इस गाने के उस पार आई विल गिव यू अ क्विक ट्रैफिक अपडेट बिफोर आई से माय बायस टू यू.

एंड रैप अप से पहले आपको देती हूँ जी ट्रैफिक अपडेट, क्योंकि टाइम चल रहा है, दिस इज आफ्टरनून ड्राइव टाइम, और अब आप निकल चुके हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जानना जरूरी है. देर आर टू कोलिजन्स दैट आई कैन सी राइट नाउ. वन इज एट 35 ईस्ट टूवर्ड्स पोस्ट ओक ड्राइव, लेक व्यू बुलेवार्ड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड, including an exit lane. The severity of this incident is reported high. और आपको ये भी बताऊं जी कि अभी कोई 20 मिनट पहले ये incident verify हुआ है, तो शायद आपको यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा backup देखने को मिले. But that is, और जो दूसरा incident है वो मेरे ख्याल अराउंड 2-3 घंटे पहले हुआ था, तो it's almost clearing up. It was at 35 east towards Swisher Road and southbound, जिसकी वजह से exit lane एक बंद थी, but most probably things are clearing up there. But that is one collision that we can see and on the roads of Dallas, jo ki abhi nazar aa rahi hai. Ek construction ho rahi hai ji, jo ki loop 12 pe ho rahi hai towards northwest highway spur 348 northbound, jiski wajah se do lanes blocked hain, aur iski wajah se kyunki rush hour hai isliye aapko yahan pe kafi traffic dekhne ko mil sakta hai. That's pretty much all that I have for you where your traffic is concerned, right here on your afternoon drive time with Sunheri Kiran. It is time for me to say my bye to you. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Kal milungi aap एक बार फिर, सेम प्लेस सेम टाइम, 2:30 PM टिल 5 PM, पन एशिया रेडियो. और कल है वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं रोमांटिक मेलोडीज से, देन वी गो टू पॉप फ्रीक्वेंसीज एंड पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक, देन वी टॉक अबाउट द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. वो आपका और मेरा फेवरेट टाइम होता है, आपकी बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं, वी ऑल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ ड्रामास दैट वी आर वॉचिंग और शुड एड टू आवर लिस्ट, देन वी एंड अप विद ट्रॉफी ट्रैक्स. सो मच लाइंड अप फॉर यू ऑलवेज ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे. Let's go.

0: Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
0: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
0: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही हूं.
8: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। वैसे तो नैनाओं को ना थैंक यू करना चाहिए आपको कई बार, जो गाड़ी में बैठे हैं स्पेशली जिनका डेली का काम है ना गाड़ी में ट्रैवल, एंड देन यू गेट स्टक इन ट्रैफिक जाम। और जब ये ट्रैफिक जाम होता है तो इंसान क्या करे, इंसान इधर उधर ना देखे। अब अगर इधर उधर देख रहा है, अब कुछ अगर खुदा ने अच्छी चीज़ बनाई है, ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने जैसे फूल बनाए हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हो, रुक के क्या फूल खिला हुआ है ना, कोई फ्रूट अच्छा टेस्ट करते हो, वाह कितना मीठा एप्पल है। अब अगर भगवान ने आपको ट्रैफिक जाम में बोरियत से बचने के लिए कुछ व्यू दे रखा है तो भगवान का है ना वो थैंक यू। अब उस व्यू में चाहे मतलब साइड वॉक पे फूल लगे हों, गाड़ी में कोई बैठा हो या बैठी हो, अब ये तो देखो ऊपर वाले ने जो दिया उसको थोड़ी हम ठुकराएंगे ना। भाइयों जो गाड़ी में बैठे हो, अगर कभी आपकी गाड़ी अकेले हो मतलब आप गाड़ी में, तब तो कोई चिंता नहीं, लेफ्ट देखो राइट देखो, देख के गाड़ी चलाया करो, ठीक है ना। ट्रैफिक जाम जब लगा हो, लाइट पे जब खड़े हो, तो स्पेशली आसपास देखना है कि गॉड ने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको अप्रिशिएट करना है हमने। और जब बीवी के साथ हो तो एक झलक देख सकते हो, उसके बाद वापस गाड़ी की तरफ और बीवी की तरफ और सड़क की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। जनहित में जारी। इसमें हमारी गलती नहीं है, गॉड हैज मेड सर्टेन ब्यूटीफुल थिंग्स, लुक एट देम एंड से थैंक यू जीसस, थैंक यू राम, थैंक यू एवरीबॉडी।

0: taken from the movie Vibe, which was with Kunal Khemu and Vishen Kadhir. You haven't seen it, go check it out. I'll be back after a break.
1: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
6: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
7: तारा वो तारा हर तारा
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल info@seemamehtalawfirm.com
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
13: अरे यार, घर मिल गया।
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
6: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
6: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work?
18: We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

लोगों को ना बड़ा शौक होता है कि महंगी महंगी चीजें लेंगे, पर मैं आपको एक भाव बताना चाहता हूँ, ये महंगी महंगी चीजों का ना कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। लोग समझते हैं कि मैंने इतना महंगा चीज लिया, जैसे मेरा दोस्त कहता मैं दुबई से ना ऊद का परफ्यूम लेके आया हूँ, है जी, कहता 1.5 लाख रुपए का पड़ा। उधर से मेरा दूसरा दोस्त 5 रुपए की मूली खा के आया था, अब देख लो वो 5 रुपए की मूली जो है ऊद शूद को पीछे छोड़ गई। महंगे महंगे फोन, आईफोन 18 मैक्स प्रो, पता नहीं क्या क्या ब्रो, मूली 5 रुपए, काम खत्म। भाई गण, मैं तो कई बार नोटिस करता हूँ और जब भी ऑफिस में आता हूँ खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि चलो आज यहाँ कोई मूली का पराठा खा के नहीं आया। और भाई गण, कभी कोई खा के आया हो तो आप भी जानते हो क्या हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसमें ना खुदा की भी गलती है, उसने बताया नहीं कि इस पे बी केयरफुल व्हेन यू कंज्यूम, ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। नो खैर, उसके मन को भाया, उसने मूली काट के खाया, मेरे मन को भाया आज मैं पपीता काट के खाया, सुबह लेके आया हूँ। आजकल रूटीन बनाई हुई है कि मार्विन सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, या तो वो पिएगा बनाना शेक विद सम नट्स शट्स, यू नो, काजू कुजू और थोड़ा बादाम शदाम डाल के जरा घी करके। फिर मैं दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है जी, पपाया, आप भी खाया करो पपीता। पपीता खाओगे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ देता है वो। एक तो पपीता खाने से आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है वो बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा उसके साथ आप मिलाओगे चकुंदर, क्योंकि चकुंदर खाने से आपका खून साफ होता है। अब जिसने पीना है कम से कम उसको चीज़ तो क्वालिटी की दो।

तेरा मेरा दोनों का दिल बेसब्र है डूबे, टेकन फ्रॉम द मूवी गहराइयां. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो, ओनली ऑन फन एशिया 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ द हैरी पॉटर एक्टर टॉम फेल्टन. टॉम फेल्टन वाज द गाय हु वाज प्रीटी मच अ किड, बट ही डिड द रोल ऑफ डार्को मैलफॉय इन द हैरी पॉटर फिल्म्स. इन 2018 ही स्टार्ड इन द यूट्यूब रेड सीरीज जिसका नाम था ओरिजिन. एंड फिल्म करियर की बात की जाए, ही हैज प्लेड रोल्स इन फुल Circle, Murder in the First and Second Sight. Today is September 22nd. That marks his 39th birthday. A very happy birthday to Tom Felton, a.k.a. Darko Malfoy, celebrating his 39th birthday and 22 September. 22 तारीख वैसे भी खास होती है क्योंकि 22 अप्रैल को भी एक बड़े दिग्गज आदमी का बर्थडे होता है. बताऊंगा कौन. For now, let's take you to the next number right here on Fun Asia. And you're going to be with me till 7 o'clock. Saath-saath ye bata doon ki this part of our show is brought to you by HOKO, which is one of India's most loved food brands that is now here in Texas for you. And right on Preston Road, ek aisa jagah jo India mein toh bahut famous hai hi, but now they are bringing you chana puri sandwiches, curries and their legendary cold cocoa. Aur Sidhu saab kehte hain, ja ke piyo ji cold cocoa, maja aaye to taali thoko. This is HOKO that is bringing you all of this. 2693 Preston Road. And the best part is ki agar aapke paas student ID hai, then you get 20% off any order that you place. And if you have employee discount milega aapko, if you're employed and you have your employed ID, lunch pay, which is Monday to Thursday, they have something called lunch packs. Us pe aapko milega 20% off as well.

मैंने भी तेरे नाल नचना है यार, एंड नचने के मौके बहुत आएंगे, बट फिलहाल जो मौका है जी आज खुशी का, वो ये है कि सोमर एंड मरियम आर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी टुडे। अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ लव बर्ड्स। गाड़ी में दोनों जा रहे हैं जी, और मैं चाहता हूँ कि उनका ये जो ज़िंदगी का सफ़र है वो इसी स्टेशन की तरह रहे, जिसमें सिर्फ खुशियाँ, जॉय और खूबसूरत नगमे हो। एंड यही आज दुआ है मेरी, सोमर एंड मरियम, अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ। हियर इज़ योर सॉन्ग।

0: On the request of Mariam and Somar, this was the track for their happy welding anniversary. Wedding ka dusra naam welding hai. Farak sirf ye hota hai ki welding mein jab jod ban raha hota hai tab chingariyan nikalti hain. Tr tr tr tr pat pat pat pat. Aur wedding mein jod pehle banta hai aur chingariyan sari umar dheere dheere. Main bhi ek commercial break ke baad wapas aaya. Aap kahin mat jaye, dial ko wahi rakhe, abhi aaya.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
5: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
2: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
6: व्हाट इफ योर नेक्स्ट होम केम फुली लोडेड विद ओवर $35,000 इन प्रीमियम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइनर फर्निशिंग्स इंक्लूडेड? दिस नियरली न्यू होम इन कैम्ब्रिज Crossing, Selena, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors, and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
7: Every home has a story. Let's create yours together.
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
9: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
14: लैपटॉप में.
13: इन्वेस्टमेंट,
14: गूगल ड्राइव,
13: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
14: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
13: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
15: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
16: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
15: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: You're listening to the Evening Drive Time Show. It's 5:48 in the studio clock. 5:48 minutes, September ki 22 tarikh, and this is the show which is called the Bindaas Show. It is time for a giveaway which I am bringing for you, and this is from the Mirage Lounge, which is located hai ji, right here in McKinney, and they're giving you an opportunity jis pe aapko milega $20 off their $50 bill. Pehle bata dun ki Mirage Lounge jo hai ye located hai McKinney mein, and they are a premium hookah lounge jisme bahut yummy-licious khana milta hai. Main khud kha ke aaya hu. Their cocktails are awesome. Live music and DJ nights are regularly placed there for you. Enjoy happy hour Monday through Thursday, 11 baje se leke sham ko 6 baje tak aapke liye happy hour hai. And ladies night and college nights are always planned with their venue. Make sure to check their website for more information. Aur aaj jab main aapse ek sawal puchunga, whoever gives me the most creative answer will get themselves a $20 off on their $50 bill, which I think is a great, great offer. And sawal main bilkul simple sa puchunga. Aur aapne apne creative ghode dodane, and you have to come back to me with some creative answers, thinking outside of the box. Normal se thoda hatke, theek hai? Ab sawal ye hai ki Hindi words mein bhi na, jaise English words mein to kafi cheezein silent hoti hain, jaise knife mein K silent hota hai, haan ji, aur wo jo fighting karne wala knight hota hai usme bhi K silent hota hai. Isi tarah Hindi mein bhi kai cheezein hoti hain jisme kuch kuch silent hota hai. For example, jab bidai ho rahi hoti hai na, bidai, ladki ki bidai karte hain na maa baap, to jab bidai ho rahi hoti hai तो आपने देखा होगा अक्सर कि विदाई के टाइम जो दूल्हा है उसके कान में आके या जाते जाते उसको बोला जाता है ख्याल रखना. ठीक है, सुना है ना, आपको भी बोला होगा आपके ससुर ने या आपकी सासू माँ ने, ख्याल रखना. उसमें अपना शब्द जो है वो साइलेंट होता है. ख्याल रखना तो बोल देते हैं, अपने वो कर देते हैं साइलेंट. इसी तरह आपने मुझे बताना है दुनिया में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कोई ना कोई वर्ड साइलेंट हो जाता है. जैसे कि अगर आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार जाते हो जब आप, तो बाज़ार जाके दुकानदार कहता है ना, घबराइए नहीं, आपको ठीक ठीक लगाऊंगा, उसमें चूने का जो वर्ड है वो साइलेंट होता है. तो आपने बताना है. इसी तरह आपको क्या मालूम है जो हमारे लाइफ में डे टू डे में साइलेंट होता है इन द हिंदी वर्ल्ड. ठीक है, जैसे कि दोबारा से बताता हूँ, जब आपकी बीवी की बधाई हो रही थी, आप साथ में गाड़ी में बैठे थे, तो आपको किसी ने बोला था ना ख्याल रखना, उसमें उन्होंने अपना शब्द नहीं बताया था, वो साइलेंट था. और अब आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से आपके दिमाग में ऐसे कौन और शब्द हैं जो साइलेंट होते हैं डे टू डे हमारी नॉर्मल गलबात में. दो विनर चूज करूंगा जी मैं, और जब आपकी कॉल्स आएंगी आई एम गोना पुट देम ऑन होल्ड वन बाय वन एंड गेट टू यू वन एट अ टाइम. गुड इवनिंग फनेजिया, आपका नाम?
1: हेलो मार्विन भाई, पंकज
0: जी. पंकज जी कैसे हैं? बड़े थके हुए लग रहे हैं आज, क्या लंबा दिन था
1: भाई? जब आप 35, 121 और जॉर्ज वो तीनों क्रॉस करके आ रहे हो
0: भाई, आप तो जंग से ही आ रहे हो.
1: मेडल मिलना बाकी है, आपसे मिलेगा अभी.
0: पंकज भैया बताओ फिर, और क्या साइलेंट होता है हमारी जिंदगी में?
1: भाई एक बार मैं अपने कॉलेज के टाइम पर एक लड़की के साथ घूम रहा था, तो प्रोफेसर साहब आ गए, तो किसके साथ घूम रहा है? मैंने कहा बहन है, और धीरे से साइलेंट बोला किसी की.
0: हाँ बहन है किसी की, क्या बात है पंकज भैया, आपका आंसर लॉक कर दिया गया. क्या बहन है किसी की, ऑल राइट. ये भी अच्छा साइलेंट था, ये तो प्रैक्टिकल साइलेंट आपने यूज किया यार, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. आपकी कहानियां मतलब आप वो कहते हैं ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, पंकज की कहानी फिर किसी दिन बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का पंकज जी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर. गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
2: हे माय नेम इज
0: राजन भैया. कैसन
2: कैसे जी?
0: आप कैसे हैं राजन जी?
2: आपकी दुआ सरकार सब ठीक है.
0: हाँ तो बताइए फिर सर.
2: मेरा वर्ड है जब शादी होते हैं ना तो बोलते हैं हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, उसी दिन से वही साइलेंट वर्ड है.
0: ओ तो सिर्फ बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड बैंड ऐसे
2: खत्म.
0: मतलब भाई साहब ने कहा जी खत्म, राजन भैया तो पहले ही बोल गए बस खत्म. राजन भैया थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर एज वेल, एंड आई एम गोना कीप टेकिंग योर कॉल्स. मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि और क्या क्या शब्द साइलेंट होते हैं यार. वैसे तो बहुत सारे शब्द दुनिया में साइलेंट हैं, जैसे कि चलो आ गए कोई हमारे से, इनसे बात करते हैं, हम क्यों बात करें ज्यादा। गुड इवनिंग फानेशिया, आपका नाम?
3: हाय अरुण भाई, मेरा नाम विनय है।
0: विनय जी कैसे हो आप?
3: सब बढ़िया सर, चल रहा है, चाय पी रहा हूँ।
0: चाय पी रहा
3: आपके आपका क्वेश्चन सुन लिया था, एक बार फोन करने के लिए सोच कर लिया।
0: अच्छी बात है, सोच कोई कामयाब करता है ना ऊपर वाला। आपने सोचा, आपने फोन मिलाया और देखो मिल गया।
3: मिल गया, वो भी सही है, वो भी सही है। मेरे हिसाब से काम वाला का है कि जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो लोग पहले बताते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ बाद में बिल भर देना,
0: बिल
3: बढ़ाएगा, बिल भर देना, वो नहीं बोलेंगे।
0: तो मतलब
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो बोल के
0: बेसिकली ये लोग भी उन्हीं दुकानदार की तरह है जो कहते हैं बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक ठीक लगाएंगे, चूना लगाना बताना,
3: लगाएंगे
0: चूना चूना चूना। ये हो गए जी विजय जी, विजय जी ने अपना दिया जी। राजन जी बोले खत्म, पंकज जी बोले थे क्योंकि हाँ इनका भी हमारे पास जवाब आ चुका है जी। सवाल ये चल रहा था आज, बड़ा सिंपल सा है यार, कि अगर वर्ड्स होते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसमें कई चीज़ों में आपका जैसे निमोनिया में पी साइलेंट होता है, हिंदी में हम ऐसी क्या क्या बातें करते हैं जिसमें कुछ कुछ साइलेंट होता है। जैसे कि जब विदाई होती है तो दूल्हे को अक्सर कहा जाता है ख्याल रखना, उसमें भूल जाते हैं बताना कि अपना। और आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो आप जानते हैं? गुड इवनिंग फर्नीचर रेडियो, आपका नाम?
4: हेलो जी, हेलो, मेरा नाम मयंक है।
0: मयंक भाई कैसे हैं?
4: बढ़िया है, बस डॉटर को स्कूल से लेके आए हैं लौट के।
0: बहुत अच्छा किया है, लौट के आए हैं, लौट के आना जरूरी होता है। सुबह का भूला अगर घर को शाम को लौट आए तो उसको मयंक कहते हैं। मयंक भाई
4: बिल्कुल
0: बताइए, ऐसा कौन सा आपने वर्ड सुना है जो, या आपको एक्सपीरियंस हो कि उसमें कुछ खा जाते हैं लोग, बताते नहीं है, साइलेंट रख जाते हैं?
4: सो ये जो चीज है ये इंडिया में बहुत होती है।
0: अच्छा,
4: अगर आप कोई शॉप में जाते हो सामान खरीदने के लिए और अगर आपकी वो रेंज के बाहर होता है तो हम शॉपकीपर को बोल देते हैं कि भाई मैं इसको आप संभाल के रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं और वो थोड़ी देर कभी नहीं होता है वो,
0: नहीं, पर
4: वो हम जाके दूसरे शॉप में देखते हैं कि सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
0: ये तो आपने ठीक कर दिया, बस इसमें साइलेंट कुछ नहीं हुआ। या तो आप ये कहें ना मैं आ गया, कभी नहीं, तो ये बात मैं समझता हूँ कि कभी नहीं साइलेंट था। बट आई अप्रिशिएट योर कॉल बड़े भैया, मयंक नाम था इनका। आगे चलते हैं जी। गुड इवनिंग फर्नीचर रेडियो, कौन बोल रहा है जी? रेडियो हेलो हेलो हेलो हेलो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, नहीं तो वो कट कट कॉल कट जाती है। सर गुड इवनिंग, आपका नाम?
5: मेरा नाम गौरव है।
0: गौरव भैया कैसे हैं?
5: हाँ, तो बचपन में जब रिजल्ट आता था ना तो पापा पूछते थे मम्मी से कि बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, तो मम्मी कहती थी बस पास हो गया। तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी बताते

0: हाँ, तो बचपन में जब रिजल्ट आता था ना, तो पापा पूछते थे मम्मी से कि बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, तो मम्मी कहती थी बस पास हो गया। तो
1: बस
0: वो
1: पास
0: कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी बताती थी कि कुछ में फेल भी हो गया है,
1: कुछ में फेल भी हो गया
0: पूरी
1: बट ओवरऑल पास हो गया।
0: ओवरऑल पास हो गया, अच्छे नंबरों से तो नहीं हुआ है बट एक आध
1: अच्छा
0: सब्जेक्ट में हो सकता फेल भी हो गया।
1: पप्पू पास हो गया, ये बहुत खुशी की बात है बड़े भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लास्ट कॉलर ले रहा हूँ जी, गुड इवनिंग फनीश जी, आपका नाम बताइए। हेलो, नहीं हेलो, गुड इवनिंग
0: पास हो
1: फनीश जी,
0: गया
1: रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप, हु इज दिस? रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज़्यादा, अगर मुझसे बात करनी है तो ये तो करना पड़ेगा भैया, कौन बोल रहा है?
0: गुड इवनिंग, दिस इज अभिनव हियर।
1: अभिनव, अभिनव जी, कोई ऐसा शब्द जो साइलेंट हो एक्चुअल में?
0: कई बार दोस्तों में ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई हो गई या मजाक में भी दूंगा एक,
1: दूंगा,
0: मतलब
1: दूंगा
0: थप्पड़
1: एक,
0: मुक्का कान के नीचे।
1: दूंगा एक, ये भी एक बड़ा
0: अभिनव,
1: जबरदस्त निकाला भैया। क्या बोले थे आपका नाम आप? अभिनव, अभिनव दूंगा एक। वो कहता है कि अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया,
0: बात
1: मेरा बना हुआ है, मेरा कोटा पूरा हो गया, वो
0: बिल्कुल
1: पड़ी बॉटल वहीं आई से, अपना बना ले और पिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई,
0: बिल्कुल
1: यो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दे रहा हूँ जी, एक नाम फॉर दैट कॉन्टेस्ट। एंड द सेकेंड विनर दैट आई वांट टू चूज इज पंकज। पंकज, इफ यू लिसनिंग टू मी, गिव मी अ कॉल। एंड अभिषेक, यू प्लीज स्टे ऑन द लाइन, यू गाइज हैव वन $20 ऑफ योर $50 बिल एट मिराज हुक्का लाउंज।

पंकज अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे थे, बहन किसी की जरूर मुझे कॉल कीजिए, आई वांट टू टेक योर डिटेल्स एंड गिव यू दैट गिव अवे फ्रॉम मिराज हुक्का लाउंज इन मिकिनी।

घर पे ना, घर पे बेल बजती है, टिंग डोंग, नौकर दरवाजा खोलता है, आगे एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है, और छोटू साहब हैं घर पे? कहता, नहीं साहब, साहब तो 2-3 दिन के लिए घूमने गए हैं। बंदा कहता, अच्छा अच्छा इंजॉय करने गए हैं? कहता, नहीं साहब, मैडम भी साथ गई हैं। अब आप डिसाइड कर लो, आपने एंजॉय करने जाना है कि मैडम को साथ ले जाना है। बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। देखो मैं तो साथ लेके जाता हूँ, एंजॉयमेंट मेरी तो तभी होती है, आपकी नहीं पता मुझे। मैनेजमेंट है इसकी, मैं तो उनको कुडोज देता हूँ कि इतने साल से नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है। बीन 21+ years, आई हैव बीन विद द स्टेशन फॉर अबाउट 20 years, 20 साल का सफर हो गया जी मेरा। उतना बुजुर्ग नहीं हूँ, घबराना नहीं, 22 साल का था जब, छोटा सा वो कच्ची कली था, इन्होंने घेर लिया, रजिया गुंडों में फंस गई। तलवार है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, खाता है पालक ना खाता घास है, बस इसको एक ही चीज की प्यास है कि आप लोग खुश रहें डालस वालों। वाह वाह वाह, क्या शायरी करता ना, वो बाद में बताएंगे, पहले आपको ये बता दीजिए कि अगर आपने अभी तक अपना PCP यानी कि अपना फिजिशियन नहीं ढूंढा है, अपना डॉक्टर एक बंदे को नहीं बनाया है, देन आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई डॉक्टर मनदीप आचार्य। ही इज विद टेक्सास प्राइमरी केयर, जो कि आपके लिए लोकेटेड है जी फ्रिस्को में। दे हैव गॉट 2 locations, वन इज ऑन काइजर रोड, दैट्स अंडर द ब्रांड कॉल्ड लुनॉक्सी मेडिकल, एंड द सेकंड वन इज ऑन मेन स्ट्रीट एंड 423 इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड टेक्सास प्राइमरी केयर। पहले तो ये बता दूं कि इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, दे आर फुल सर्विस डॉक्टर्स प्रैक्टिस विच हैज योर लैब्स इन हाउस। जी हाँ, आपको लैब्स करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। देयर एक्सरेज, देयर CT scans and every other machine that you can think of when it comes to scans and x-rays is available in-house as well. They do have a med spa in at their facility, so all of your med spa needs can be taken care there itself. And like I said, x-rays or CT scans or cardiac diagnostics or Himalayan Medical med spa services all are under one roof. And their Lunoxy Medical also does the same things. Dr. Mandeep Acharya is the leader of this one. Texas Primary Care is my PCP, and I can simply recommend them to you, not because they advertise with us, but I think because they are genuinely very good at what they do, and their practice is neat, clean, the way you expect your PCP to be. That's what they give to you. They're open 7 days a week. You don't need an appointment. Just walk in. And agar aap jai rahe hain, toh batana ki Marvin aapki tarif kar raha tha. Because I actually think they deserve all the praise that they can get. That is Texas Primary Care for you right here in the heart of Frisco.

नहीं नहीं ब्रदर, अपन ने ये नहीं लगाना था गाना, अपन ने लगाना था कोई और। ये आजकल ना बीच में मेरे को एक, अगर आप यूज़ करते हैं सम ऑफ दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई एंड अदर्स, आपने नोटिस किया होगा कि गाने का नाम लिखते हैं ये ओरिजिनल जो होना चाहिए, फिर जब आप गाना लगाते हो आपको पता लगता है ओ तेरी ये तो कुछ और ही निकला। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम वी ऑल आर हैंडलिंग, बट इट्स ओके। थोड़ी सी मेहनत अगर अपना गाना चूज करने में लगानी पड़े तो क्या हो गया दोस्तों, वो मेहनत मैं करके रहूंगा।

What a lovely song, Pritam Sahab ka music, and Bajrangi Bhaijaan was the name of the movie. Kuch to bata zindagi, a beautiful, beautiful number, shairi, badi zabardast. And I think Jubin Nautiyal was the guy who's singing this track, another wonderful artist that I really admire. Ek ye batana hai aapko ki agar aapke parents elder ho rahe hain, they are with you here in the United States, that's a, first of all, that's a blessing that you're able to take care of your parents as they are getting older. जिनके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप उनको चेक ज़रूर करते रहा करें और एक कॉल करते रहा करें, बिकॉज दैट्स व्हाट गिव्स देम द एनर्जी फॉर द डे. एंड नाउ इफ योर पेरेंट्स आर हेयर इन द यूएस एंड डैलस में स्पेशली हैं, देन टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट. यू नो आई हैव टेस्टेड दिस ऑन माई फादर ऑल्सो, एंड पहले उनकी बहुत कंप्लेंट थी, आई हैव दिस पेन, आई हैव दैट पेन, एंड व्हेन आई गॉट हिम टू स्टार्ट वर्किंग विद अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेटिंग हिज न्यूट्रिशन राइट, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर हिम. Arthritis ki pain chali gayi. Me myself is a great example of that. I had a hip replacement surgery and I had to go through a post-surgery rehab, and I did that with Texas Star Rehab and Performance Center. They got me back on my feet in no time because ye log personal attention dete hain aapko. Do locations hain inki. One is in Irving, right on Beltline and 635. The other one is a brand new location in Frisco. There, dono locations pe aapko milega, of course, of expert physical therapy solutions, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy, and more. And the practitioner who runs this practice, his name is Rushi. He himself is a physiotherapist, given entire life to this physiotherapist career, and served many sports players, including Sachin, Sehwag, and Rawalpindi Express, including some of the mainstream American stars as well. Give them a call or visit them on the website. Chahe joint pain ho, arthritis ho, sciatica ho, they will make sure that you get the right nutrition and you're back on your feet in no time with natural remedies. TexasStarRehab.com is that website for you. TexasStarRehab.com. You know, mere school mein, mera ek dost tha Sunny Behl, sabse shararti londa, mere baad. To uska na kuch rehta tha, wo kuch na kuch chhedkhani zarur karta tha. To humare ek professor sahab the, वो एक दिन लेक्चर दे रहे थे कि फिज़िकल ये सीपीआर कैसे देना है. तो सीपीआर देते देते वीडियो दिखा रहे थे और उसमें एक लड़की थी जिसका वीडियो वो दिखा रहे थे. तो बोलते हैं कि अगर कोई लड़की बेहोश हो जाए तो तुम्हें उसे ना मुंह से सांस देनी है ताकि उसके फेफड़ों में हवा जाए, और हवा जाएगी तो वो होश में आ जाएगी. ठीक है जी, कोई सवाल? मेरा सनी बहल दोस्त कहता है, इससे पूछ बेहोश कैसे करना है.

एक चिमणा चिवचिवला.

0: साक्षी।
1: तुमसा मुलगा बादशाह, दैट्स व्हाट ही सेड राइट। क्योंकि मुझे ये पता है कि मुलगी मतलब लड़की को कहते हैं मराठी में, और शायद मुलगा कहते होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तुमसा मुलगा बादशाह, तुमसा मुलगा बिंदास, तुमसा मुलगा मारवन, ऐसा चलेगा? या कुछ और कहते हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिए मेरे मराठी लिसनर्स, वेयर आर यू? तुमसा मुलगा मारवन, बट दैट वॉज योर बॉय बादशाह, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे नहीं आती मराठी यार, हर चीज़ हर बंदे को थोड़ी आती है ना। अब देखो बताऊंगा आपको एक बात ना, बड़ी खतरनाक। अब लोगों को लगता है कि दोहे लिखने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि हर बंदे के बस का काम नहीं है दोहे लिखना। इट्स अ वेरी इंटेंस राइटिंग, दोहे लिखना कबीर साहब के हाथ में था। पर फिर मैंने सोचा कि मारवन यार तू भी तो दोहे लिख सकता है, तो फिर मैंने लिखे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हे चिंगारी तू जंगल का शेर, तो मैं घातक शिकारी मैं घुसता हूँ वैसे। देखा आपने, नोट किया, दो हे थे, हे हे। खैर आज के दिन एक और चीज स्पेशल है, क्या? ये लो,

0: The 1994 TV sitcom created by David Crane and Marta Kaufman, starring Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, and Matthew Perry, David Schwimmer as well, premiered on NBC on today's date, which was September 22nd. The year was 1994. That makes it almost 30 years ago. That will be completed in, I think, actually 32 years. Wow, time flew by. My wife's favorite sitcom, Friends, came into being today, 22nd of September, 1994.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
4: एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली It's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
5: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai and under 926641.
6: हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
7: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में
7: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
4: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: हेलो वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन हाउ मे आई हेल्प यू
13: हेलो मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है
12: फिकर नॉट वी हैव द Perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.